मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026 सुबह के 5:59 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित

0: प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का प्रथम पुष्प मां भारती के चरणों में, जिसकी रज में लूट लूट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाएं।

ईश्वर तो कणकण में व्याप्त है। परमात्मा को बल, बुद्धि, धन, पद, प्रतिष्ठा आदि से हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु तो केवल और केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना।

प्रभु तो सबका कल्याण करते हैं, बस उन्हें भाव से पुकारिए। वो तो जगत पिता है, जगदीश्वर है, भक्त वत्सल करुणा निधान है।

दुर्गा परम सनातनी जग की सृजनहार आदि भवानी अंबिका सृष्टि का आधार। आइए ध्यान करें माता रानी का इस भजन के माध्यम से।

है। पूजा में भूल से अप्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। आइए सुने श्री हनुमान जी की आरती।

आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं। आरती की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए की जाती है।

श्री हनुमान जी की आरती के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। इसमें आज आपने देशभक्तिपूर्ण रचना रविन्द्र दीक्षित के स्वर में, भक्ति रचना जगजीत सिंह से, पुरुषोत्तम दास जलूटा से भजन, देवी भजन लखवीर सिंह लखा व साथियों के स्वर में और कार्यक्रम के अंत में श्री हनुमान जी की आरती हरिहरन और साथियों के स्वर में सुनी। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए खेती किसानी कार्यक्रम, विषय होगा मुर्गी पालन से लाभ। सुबह 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह, संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। चिंतन का प्रसारण होगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली काव्य पाठ, कवि होंगे संतोष सिंह राय। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर सुनिए गीत गुंजन कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। लोकरंग कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:00, कलाकार होंगे अनुरुद्ध सिंह राय। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:05 पर सुनिए रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे राजेश तिवारी रंजन, रमेश चंद्र सोनी योगा, राजेंद्र प्रसाद तिवारी स्वदेश, मंजुलता भारद्वाज, दिनेश कुमार दीक्षित और श्रीनारायण तिवारी।

शाम 5:02 पर भोपाल से अमरेली करेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत सुनिए आकाशवाणी छतरपुर केंद्र से शाम 5:30 पर। सुगम संगीत का प्रसारण होगा शाम 6 बजे। कलाकार होंगे चंद्रू आत्मा।

शाम 6:30 पर बुंदेली लोक गीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कलाकार होंगी ब्रजलता मिश्रा। संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी और आज की नसीहत पुनः सुने। आज की सीख का विषय होगा जो जानो जाड़े को भेद तो मुदो कमरा को छेद। रात 8:00 भोपाल से हम रिले करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। रात 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। आज हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम। और अब सुनिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित एवं मध्य प्रदेश के सभी प्राइमरी केंद्रों द्वारा अनुप्रसारित कार्यक्रमों के बारे में। दिन में 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दोपहर 12:00 सुनिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:00 सुनिए महिला कार्यक्रम। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 2:00। 2:30 पर आप सुनिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम।

श्रोताओं एक बार हम आपको पुनः बता दें, शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर

0: आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलोर लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की और आज की सीख का विषय होगा जो जानो जाड़े को भेद तो मुदो कमरा को छेद। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है खेती किसानी कार्यक्रम।
1: भैया राव जिन्हें अपने आजकल मुर्गी पाल रहे हैं तो उकिलाने उन्हें बहुत सारी बातों को जानबो जरूरी होते। कैसे कि मुर्गी पालन अपनी खेती किसानी के संगे संगे एक मुख्य व्यवसाय है जो कि अपने किसान भैया गांव में करते हैं, बड़े बड़े शहर में भी करते हैं। अकेले उन्हें मुर्गी पालन करने हैं तो सबसे पहले चूजन को कृत्रिम पालन कैसे करें जो जानबो जरूरी होते। अगर उनके पास जो जानकारी नहीं है के चूजन को रख रखाव कैसे करें तो उन्हें बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है या नुकसान उठावो पड़ सकते है। अब मुर्गी पालन सबसे पहले जब करने हैं तो भी चूजा कहाँ से ले आए जो भी उन्हें पता बहुत चाहिए तो शासकीय मुर्गी पालन केंद्र बहुत जगह पे हैं और बहुत सारे अपने प्राइवेट भैया भी मुर्गी पालन करे हैं जो चूजा अपने बच्चा निकाल के हैचरी से बेचे थे। भी एक दिन दो दिन पांच दिन या एक हफ्ता की भी चूजा बाजार में उन्हें बेचे थे या अपने जिन भैया का पालन होते वे उनके पास अपनो एक आर्डर भेज दिए थे कि हमें इतने चूजा पालने हैं जिसे कि वे उन्हें मंगा लेते। अब मुर्गी पालन के लाने सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि इनको बाड़ा तो जितने पे अपन का चूजा पाल रहे हैं उतने पे ये बात को ध्यान रखें कि नमी ना हो, सीधी धूप ना पहुंचत हो और सर्दी गर्मी और बरसात से बचाव कर वो बहुत जरूरी है। कैसे भी नन्हे नन्हे चूजा हैं, अगर उन्हें अपन ने न बचाओ इन बातन से तो उनके मरने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होते। अब जब बच्चा पाल रहे हैं चूजा पाल रहे हैं तो उनके दाना की व्यवस्था बहुत जरूरी होते तो इनके लाने एक संतुलित जो दाना होते वो बनावो जरूरी होते या बाजार में अपने मिलत है तो पंचभैया होते से लेके उनका दे। अगर सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो जिन बाड़न में या जिन घरन में अपने चूजा पाल रहे हैं तो उतने पर रात के या सवेरे भूसरा की बेला फट्टा की टटिया डाल दें जिससे कि सीधी हवा ना लगे और ठंडक ना हो। बल्फ नीचे करके शेडन में लगाकर लटका दें जिससे कि उन्हें गर्मी अगर जितनी चांद है तो उनके नीचे आके भी ले सकते हैं। अब जैसे उन्हें अपने चूजा पाल रहे हैं उतने पे बुरादा कितनों डाल रहे हैं ईको उन्हें ज्ञान बहुत चाहिए। कैसे अगर जहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं और चूजा पाल रहे हैं अगर जहाँ दिन भर घूम रहे हैं बीट करने हैं उन्हें तो उनके पाउंड में अगर सन है तो उन्हें बीमारी हो सकता है, काक्सीडियोसिस की बीमारी है या और तमाम बीमारी हो जाती है, चेचक की बीमारी है या दस्त की बीमारी हो जाते है तो जिसे कि उन्हें पालवे के लाने कम से कम चार छः इंच बुरादा ऊके कमरा में डलो रहो सके जिनमें कि दिन भर घूम के उनको पांव सूखे रहें या कोनो परेशानी ना हो। अगर ज्यादा भी देख रहे हैं कि उतने पे बीट इकट्ठी हो रही है तो ऊखा थोड़ा सा झाड़ू से साफ भी कर सकते हैं। अब उन्हें एक काम को ध्यान रखने हैं कि उन्हें संतुलित आहार देने हैं, अपने बाजार में जाके ऐसो दाना खरीदने हैं जिससे कि वे जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। अभी के लाने बहुत सारी नस्लें बाजार में आ गई हैं, इनमें एक ब्रायलर हूथ है जो सबसे ज्यादा बाजार में बिकत है, जो मांस ऊको ज्यादा लोग खाते हैं तो वो जल्दी बढ़ाते हैं, लगभग 30-35 दिन में वो 900 ग्राम से लेकर 1.25 किलो तक की वजन की हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चा जो बड़े हो रहे हैं उन्हें छांट लें या जब बेचने हैं तो भी निकालें और छोटे बच्चा बचा लें जिसे कि जब बड़े बच्चा हुए से चले जाएं चूजा बिक जाए हैं तो उन्हें फिर भी खिलाने जगह काफी मिल जाए। कितनों उन्हें चूजा पाल रहे हैं, कितनी मात्रा में उन्हें 100, 200, 500, 1000 या 2000, 10000, 5000 जितनी भी संख्या में उन्हें पाल रहे हैं उनके हिसाब से पहले तो मुर्गी खाना बना वो जरूरी होते। कैसे कि अगर उनके रखरखाव में कोई परेशानी अगर आ रही है तो उनकी बढ़वा रुक जाते, तमाम बीमारी उन्हें घेरन लगती हैं तो इको ध्यान पहले रखें कि उन्हें कितनी संख्या में चूजा पाल के अपने व्यापार करने हैं। अगर भैया हल लोगों ने बात को ध्यान रखो और उन्हें संतुलित आहार दो, दाना पानी अच्छो दो तो उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले है।
0: किसान भाइयों के लिए अभी खेती किसानी कार्य

कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। विमाता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

0: संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: आज मनुष्य अपने आप से बहुत नाराज दिखाई देता है। वो मनुष्य होने का सार सार्थक नहीं कर पा रहा है। मनुष्य ईश्वर की संपूर्ण कृति तो है, लेकिन आज पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से भी उसकी स्थिति बदतर है। वो किसी भी खुशी एवं प्रसन्नता को पचा नहीं पा रहा है। मानव में मानवता का अभाव दिखाई देता है। यदि हम इतिहास की बात करें तो वैदिक काल एवं भक्ति काल में मनुष्य में अत्यंत मानवीय गुण थे और वो मानवीय गुणों से भरपूर था और उसमें राष्ट्र समाज नारी और बच्चों के प्रति अगाध प्रेम था और पीड़ित मनुष्य के दुख को अपना दुख समझता था। हर तरह से दरिद्र नारायण की सेवा करना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य था। तुलसीदास जी ने अपनी कृति रामायण में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन आज मनुष्य मनुष्य का ही दुश्मन बन बैठा है और उसे सहयोग प्रेम दया कृपा सहृदयता त्याग सहिष्णुता के स्थान पर दुख ईर्ष्या जलन दूसरों को परेशान करना सहयोग न करना और हे दृष्टि से देखा जा रहा है। मनुष्य स्वयं अपनी नजरों में गिरता जा रहा है, झूठा आडंबर रचकर अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। जो मनुष्य अपनी ही नजर में गिर गया तो वो संसार की नजर में नहीं उठ सकता। मनुष्य ईश्वर की संपूर्ण कृति होने का दंभ तो भरता है, लेकिन ईश्वरीय शक्तियों का सदुपयोग मानव कल्याण में न कर विध्वंसकारी कार्यों में सृष्टि के रूप को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये भगवान की श्रेष्ठ कृति होने का कार्य नहीं हो सकता। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम के बिना सृष्टि अधूरी है। आज मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं के द्वारा इसी समय स्वयं भुगत रहा है। बीमारियों के रूप में, मानसिक हालत के रूप में, बच्चों का अनुशासनहीन होना, अकर्मण्यता के रूप में, गरीबी के रूप में आदि बुराइयों का मनुष्य खुद निर्माता है। लड़ाई दंगे फसाद आदि बुराइयां मनुष्य का स्वभाव बनता जा रहा है। ये सब पूर्व कर्मों का फल है। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। इस उक्ति में हमें कर्मों की सतर्कता पर ध्यान देने की बात कही है। ईश्वर ने सृष्टि को रचनात्मक एवं पूर्ण आशावादिता और परोपकार की जननी ही कहा है। रात दिन चंद्रमा सूर्य नदी हवा पृथ्वी तारे सभी अपना कार्य नियत समय पर करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। मनुष्य उसका लाभ अपने जीवन जीने में उपयोग करता आ रहा है। तभी तो सृष्टि को मां का रूप कहा जाता है और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नदी को देव तुल्य माना जाता है, क्योंकि सृष्टि अपने सारे कार्य अपने हित में ना कर वो परमार्थ में निरंतर लगी रहती है। मनुष्य को सृष्टि से सीख लेकर अपना काम निरंतर मानव हित के कार्यों में सहज एवं सजग होकर करते रहना चाहिए, जिससे उसकी श्रेष्ठ भावना होने में ही श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे और सृष्टि भी परमात्मा की विराट स्वरूप के रूप में हमें अनेक कार्य कर निस्वार्थ भावना का एवं समय पर कार्य करने का पाठ पढ़ाने की शिक्षा देती है। भारतीय जीवन पद्धति भी परोपकार के ऊपर आधारित है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मनुष्य सत्कर्म करके अपनी श्रेष्ठ कृति होने का समाज को परिचय देकर समाज को नई ऊर्जा शक्ति के द्वारा भावी पीढ़ी को मार्ग प्रशस्त कर राष्ट्र समाज निर्माण में अपने जीवन की सार्थकता प्रदान कर अपने जीवन को सफल बना सकता है।
0: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा गीत गुंजन कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे रविन्द्र कुमार प्रजापति और 9:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब

आप गुनगुना उठे प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर और सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

0: प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपान्त्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर

18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन के दौरे पर 22,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक, 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रदेश में गृह विभाग ने 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए और मौसम विभाग ने राज्य के 52 जिलों में आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, बिजली और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रमुख हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए गए और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ। शाम को प्रधानमंत्री ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के साथ साथ नमो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा,
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: इंदौर में आज भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार तथा निवेश फोरम की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इस फोरम में 15 देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, आईटी और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में निवेश और व्यापार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में कहा कि दूध उत्पादन से लेकर इंडस्ट्री और माइनिंग तक हर क्षेत्र में सहकारिता का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान लोन डिफॉल्टर ना हो इसके लिए सहकारी सोसाइटियों की निर्धारित अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने का प्रयास किया गया।
2: हम अपने किसानों का जो एक साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं।
0: प्रदेश में गृह विभाग ने कल 8 आईपीएस और 66 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित कुल 74 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ और उनकी पत्नी अनु बेनीवाल दोनों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर जबलपुर भेजा गया है। वहीं नरसिंहगढ़ की एसडीओपी मिनी शुक्ला ने शुक्ला को पदोन्नत कर भोपाल नगरी पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। धार के पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो

0: में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और आधुनिक रखरखाव सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके बाद उन्होंने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां 300 करोड़ रूपये की लागत से विश्व स्तरीय पुनर्विकास कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड की दशकों पुरानी मांग पूरी हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। सागर सांसद डॉ लता वानखेड़े ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ट्रेन सेवा सागर के विकास को नई गति देगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान से अब तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। CBSE ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। पहली तारीख 6 जून निर्धारित थी। छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क में 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 400 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कौशल विकास मंत्री गौतम प्रतवाल ने कहा कि जिस तरह सैनिक देश की भौतिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह साइबर विशेषज्ञ डिजिटल सीमाओं की प्रहरी हैं। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने की बजाय रोजगार सृजक बनने की अपील की है। प्रदेश में शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। श्योपुर के कुरू नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि ये कुरू में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है। प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के 7 खिलाड़ियों का कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में चयन हुआ है। इनमें संतोष सिंह, प्रिंस गोस्वामी और निहारिका सिंह सहित 5 कैनो स्प्रिंट और 2 पैरा कैनो खिलाड़ी शामिल हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पदक जीतकर लौटने की शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कल अल्प प्रवास पर बैतूल पहुंचे। सर्किट हाउस में कलेक्टर ने उनका स्वागत किया। खंडवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पन्ना जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.2 अभियान की शुरूआत पूर्व मंत्री और पन्ना विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने की। डिंडौरी में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण किया गया। झाबुआ कलेक्टर ने माही मुख्य बांध का निरीक्षण कर जल आवक और डैम संचालन व्यवस्था देखी। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कल रोजगार मेले में 53 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया, साथ ही 23.85 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। मंडला जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने उदय चौक के पास निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का निरीक्षण किया। गुना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिंहवासा तालाब परिसर में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि हैं संतोष सिंह राय।
1: एक सखी यशोदा जी से शिकायत करने गई है। वो कहती है

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली काव्य पाठ। कवि थे संतोष सिंह राय। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म लव इन कनाडा का गीत, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे योगेश और संगीत हेमंत कुमार का।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप सुन रहे थे फिल्म मान अभिमान का ये गीत। आवाजें थी सुरेश बाडकर और साथियों की, गीत और संगीत था रविंद्र जैन साहब का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते।

ये गीत हमने लिया है फिल्म जोश से, आवाज आशा भोसले की, संगीत बप्पी लहरी का और गीतकार हैं अमित खन्ना।

90. श्रोताओ, अगला गीत हमने लिया है फिल्म बहू बेगम से। आवाजें हैं मन्नाडे मोहम्मद रफी और साथियों की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत रोशन का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गीत, मधुर आवाज जसपाल सिंह की, गीत और संगीत रविंद्र जैन साहब का।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं समाचार प्रभात बसकोची पलों में।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रहे।

0: है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि

0: संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
1: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी

0: अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इजराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister

क्या बात है। जब आईने के सामने खड़े होकर कोई खुद को निहारता है तो आईना भी उसकी खूबसूरती का मुरीद हो जाता है। बॉलीवुड में आईने का इस्तेमाल सिर्फ खुद को देखने के लिए नहीं बल्कि अपनी चाहत को मुकम्मल करने के लिए भी किया गया है। याद कीजिए 70 और 80 का वो दशक, वो दौर जब एक्ट्रेस आईने के सामने बैठकर बाल संवारती थी और पीछे से हीरो की एंट्री हुआ करती थी। चलिए रुक करते हैं एक ऐसे ही चुलबुले और खूबसूरत गीत की तरफ।

मित्रों, और जब बात हुस्न और आईने की हो तो भला बॉबी फिल्म के इस चुलबुले अंदाज को कोई कैसे भूल सकता है, जहां डिंपल कपाड़िया आईने के सामने खड़ी होकर अपने दिल का हाल बयां करती है।

दोस्तों, आईना हमेशा मुस्कुराता नहीं है। कभी कभी जब इंसान दुनिया की भीड़ से थककर घर लौटता है और आईने के सामने खड़ा होता है, तो आईना उससे पूछता है, तुम असल में कौन हो? दुनिया के सामने जो मुखौटा लगाया है, उसके पीछे का असली चेहरा कहाँ है?

साथियों, दिल का टूटना और शीशे का टूटना दोनों में एक ही समानता है। दोनों के टूटने के बाद बस किरचें बाकी रह जाती हैं। इसी दर्द को समेटे हुए पेश है अगला गीत।

दोस्तों, मोहब्बत हुस्न हकीकत और तन्हाई, आईने ने आज हमें जिंदगी के कितने रंग दिखा दिए। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, दुनिया को देखने के लिए भले ही आप हजारों चश्मे बदल लें, लेकिन खुद को समझने के लिए एक बार आईने के सामने ईमानदारी से जरूर खड़े होइएगा, तभी वास्तविकता आपको नजर आएगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन कार्यक्रम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रविंद्र कुमार प्रजापति। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुरुद्ध सिंह राय, ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार, बैंजो बजा रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बिलवारी से, कलाकार अनुरुद्ध सिंह राय।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे रावला। कलाकार थे अनिरुद्ध सिंह राय, ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो बजा रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा। अगला गीत सुनेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

0: स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: लोकरंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गारी। कलाकार एक बार फिर अनुरुद्ध सिंह राय, ढोलक वादन महेश कुमार का, और बैंजो बजा रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा।

0: आप सुन रही थी चौकड़िया, कलाकार थे अनुरुद्ध सिंह राय, ढोलक बजा रहे हैं महेश कुमार और बैंजू वादन कर रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी

द्वारा ये कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दादरा। कलाकार एक बार फिर अनुरुद्ध सिंह राय, ढोलक पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार और बैंजो वादन कर रहे हैं राजा राम विश्वकर्मा।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे दादरा कलाकार थे अनुरुद्ध सिंह राय। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे अनुरुद्ध सिंह राय। ढोलक पर संगत कर रहे थे महेश कुमार और बैंजू वादन कर रहे थे राजा राम विश्वकर्मा। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। प्रस्तुत करता है रविन्द्र कुमार प्रजापति।

श्रोताओं, कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका मित्र संतोष ताम्रकार। स्वीकारिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये पहला पत्र हमारे पास जो आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं संतोष खटसे और विनोद खटसे। आप लिखते हैं, शब्द ही सृजन है, शब्द ही संसार है, इन्हीं से उजाला है, इन्हीं से अंधकार है। शब्द जब मर्यादा में हो तो गीता का ज्ञान बनते हैं, और जब सीमा लांघ जाए तो रिश्तों का तूफान बनते हैं। एक मधुर वाक्य थके मन का सहारा बन जाता है, और एक कठोर लहजा जीवन भर का किनारा बन जाता है। शब्दों में इतनी शक्ति है कि मौन को भी अर्थ दे दें, और इतनी गहराई भी कि हंसी में छुपे दर्द को प्रकट कर दें। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को परख लेना चाहिए, क्योंकि तीर तो लौट सकता है कभी कभी, पर शब्द लौट कर नहीं आते। जहाँ वाणी में विनम्रता होती है वहाँ संबंध स्वयं ही खिल उठते हैं, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ अपनापन भी मुरझा जाता है। शब्दों को केवल बोलो मत, उन्हें महसूस करो, जियो और समारो, क्योंकि यही शब्द किसी के लिए जीवन का मरहम बन

सकते हैं। शब्द ही खुशी है, शब्द ही पीड़ा है, पर सबसे सुंदर तब होते हैं जब वे हृदय को छू जाएं। आज जब भी इन बातों को सोचता हूं तो बस होंठों पर चला आता है ये गीत।

ये पत्र आया है ग्राम लोहेड़ी महुबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका एवं रागनी यादव का। आप लिखते हैं, आज के इस आधुनिक युग में रिश्तों का स्वरूप बदलता जा रहा है, या यूं कहे जो कभी सच्चाई भरोसे और त्याग पर आधारित होती थी वे अब कहीं स्वार्थ दिखावे और अवसरवाद के घेरे में आ गए हैं। रिश्तों की इस भीड़ से लोगों का वास्तविक रूप पहचान पाना कठिन होता जा रहा है। रिश्तों का बाजार बन चुका जहां कई लोग वफादार कम और अदाकार ज्यादा हो गए हैं। पहले के दौर में रिश्ते दिल से जुड़े होते थे, जहां एक दूसरे का सम्मान, विश्वास और सुख दुख में साथ निभाना अनमोल गुण माने जाते थे। आज बदलते समय और प्रतिस्पर्धा ने भावनाओं पर स्वार्थ का पर्दा डाल दिया है। कई बार लोग हमारी जिंदगी में अपनी मुस्कुराहट और मधुर बातों से आते हैं, लेकिन कठिन समय में वे दूर चले जाते हैं। रिश्तों में नकलीपन और स्वार्थ की बढ़ती प्रवृत्ति ने विश्वास की नींव को कमजोर कर दिया है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और जिनमें सच्चाई का एहसास होता है। रिश्तों का ये बाजार तभी सजीव और मानवीय बन सकता है जब हम दिल से जुड़े और स्वार्थ से परे सोचें। ऐसे ही सच्चे और ईमानदार रिश्ते हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर और आत्मीयता से रिश्ते निभाएं, क्योंकि ये दौर अदाकारों का है, जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए भावनाओं का अभिनय तो कर लेते हैं पर सच्चाई और वफादारी से दूर हो जाते हैं। आज जब भी इन बातों को सोचता हूं तो बस होंठों पर चला आता है ये गीत।

ये पत्र आया है माँ भारती रेडियो श्रोता संघ ग्राम व पोस्ट अकटोहा तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेश कुमार साहू। आप लिखते हैं, भारतीय महिला परिधानों में हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी का विशेष महत्व होता है। इन दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति श्रृंगार को अधूरा रखती है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा साड़ी के मैचिंग कलर के हिसाब से चूड़ियां पहनने और माथे पर बिंदी लगाने की अनोखी परंपरा प्रचलित है। जिस प्रकार किसी अंक के बाद शून्य लगाने से उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के माथे पर बिंदी सुशोभित होने से उसके श्रृंगार का महत्व भी 10 गुना बढ़ जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा सावन के महीने में हरी चूड़ियां, नवरात्रि पर्व पर लाल चूड़ियां, बसंत उत्सव पर पीली चूड़ियां और शादी विवाह या अन्य खास मौकों पर विविध रंगों की बहुआयामी चूड़ियां पहनने की अनूठी परंपरा प्रचलित है। महिलाओं द्वारा चूड़ियों के कलर साड़ियों के कलर के मैचिंग के हिसाब से ही माथे पर इसी रंग डिजाइन की बिंदी लगाने की अनोखी परंपरा प्रचलित है। महिलाओं के परिधानों में हाथों में चूड़ियां, शरीर पर साड़ी और माथे पर बिंदी वास्तव में श्रृंगार की छवि को पूर्ण रूप से सुशोभित करती है। जब भी किसी खास मौके पर बहुत सी महिलाएं एक साथ निकलती हैं तो उनके श्रृंगार की अनुपम छवि देखने लायक होती है। आमतौर पर हाथों में चूड़ियों की डिजाइन और माथे पर विविध रंगों डिजाइनों की बिंदिया की अनुपम चमक और साड़ियों की विविध रंगों की अनुपम शोभा महिलाओं के श्रृंगार को और अधिक सुशोभित करती है। इसके अतिरिक्त आंखों में काजल, बालों में गजरा और विविध गहनों के पहनने से श्रृंगार की छवि पूर्ण रूप से अलौकिक होती जाती है। जब भी इन तथ्यों के संपूर्ण आयाम मेरी दृष्टि पटल के सामने आते हैं तो लफ्जों पर चला आता है ये प्यारा सा गीत।

ये पत्र आया है ग्राम व पोस्ट गोना कुसमाड़ थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी नामदेव, राम देवी, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल, चाहना, आकाश, रानी, परी, सूरबी और पायल नामदेव। आप लिखते हैं कि साथियों 24 मई को हम सभी ने भाई दिवस मनाया यानी कि नेशनल ब्रदर्स डे। भाई भाई होता है, भाइयों के आपस में प्रेम सम्मान और उनके अटूट बंधन का जश्न मनाते हैं। भाई सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन के सबसे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। भाई एक पवित्र बंधन का रक्षा सूत्र माना जाता है। भाई के बचपन की यादें, खिलौनों के लिए लड़ना झगड़ना, आपस में हंसी मजाक करना, ये सब चलता रहता है। भाई है भाई बड़ा हो या छोटा, पर हर मुश्किल में वह बहन की ढाल बनता है और हर फर्ज निभाता है। भाई भाई की भुजा माना जाता है। आज के समय में भाई हो तो भगवान भरत जैसा, जिसने हर वक्त हर समय सोते जागते उठते बैठते हर सुख दुख में अपने भाइयों का साथ दिया। आज के युग में ऐसा ही भाई होना चाहिए। भाई भाई के लिए एक अच्छे रिश्ते को निभाता है, या यूं कहें भाई एक भाई का अर्धांग माना जाता है। भाई भाई एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। जब हमने ये दिवस मनाया तो हमारे होंठों पर चला आया ये गीत।

ये पत्र आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप लिखते हैं, यूं तो हर व्यक्ति के जीवन में वह पल आता है जब वह किसी का हो जाना चाहता है। उसी दिन में प्यार के सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगते हैं। कुछ खुशनसीब होते हैं जिन्हें कामयाबी मिलती है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वक्त ऐसे झकझोरता है कि उनका दिल टूट जाता है। फिर उनके लिए ये दुनिया नीरस, फीकी व बेजान लगने लगती है। इन्हीं शब्दों के साथ होंठों पर चला आता है ये गीत।

ये पत्र आया है महोबा मिर्तला उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं नरसिंह राजपूत। आप लिखते हैं, दोस्तों गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और तपन लेकर आता है, लेकिन जेठ का महीना सबसे अधिक गर्म माना जाता है। इस महीने में सूरज की किरणें इतनी प्रचंड होती हैं कि धरती आग की तरह तपने लगती है। सुबह होते ही गर्म हवा चलने लगती है और दोपहर तक वातावरण बिल्कुल तंदूर जैसा महसूस होने लगता है। गांव की गलियां, खेत, सड़कें और पगडंडियां इतनी गर्म हो जाती हैं कि नंगे पांव चलना कठिन हो जाता है। जेठ की दोपहर में लू का प्रकोप भी बहुत बढ़ जाता है। तेज गर्म हवा शरीर को थका देती है और कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना जरूरत दोपहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि बाहर जाना है और जरूरी है तो सिर पर गमछा, टोपी या छाता अवश्य रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए खूब पानी पिए। छाछ, नींबू का पानी, बेल का शरबत, तरबूज, आम का पना शरीर को ठंडक पहुंचाती है। इस मौसम में पेड़ पौधों का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। उनकी छांव हमें राहत देती है और वातावरण को शीतल बनाती है। इसलिए हमें पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। सावधानी, संतुलित खानपान और प्रकृति के सहारे हम जेठ की भीषण गर्मी से अपना बचाव कर सकते हैं। जब भी अधिक गर्मी वाला जेठ का महीना आता है तो बस अनायास होंठों पर चला आता है ये गीत।

ये पत्र आया है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं कृष्ण कुमार गुप्ता। आप लिखते हैं, अपने कर्तव्य को हर परिस्थिति में प्राथमिकता और तत्परता से करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व के धनी भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र आपसे साझा करना चाहता हूँ। सरदार पटेल जी एक अदालत में किसी मुकदमे के सिलसिले में जिरह कर रहे थे। उसी समय उनके एक सहयोगी ने उन्हें एक टेलीग्राम उनको सौंपा, जो पढ़कर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और पुनः मुकदमे की पैरवी करने लगे। पैरवी करने के बाद मुकदमा उनके पक्ष में हो गया। जब सब लोग जाने लगे, तब पटेल साहब ने उस टेलीग्राम के बारे में न्यायाधीश और अपने वकील मित्रों से बताया कि उनकी पत्नी का निधन आज हो गया है। उसी की सूचना इस टेलीग्राम में आई थी। अपने व्यक्तिगत दुख को अपने कर्तव्य मार्ग में न आने देने वाले पटेल साहब ने एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी छतरपुर में पदस्थ एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के उस निर्णय का जिक्र भी हम आपसे करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को वरीयता ना देते हुए अपने कर्तव्य के प्रति पूरे धैर्य और विवेक से निर्णय लिया। युववाणी कार्यक्रम के लिए हम जिस दिन रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी छतरपुर पहुंचे, उसी दिन कार्यक्रम प्रमुख के अनुज का निधन दुर्भाग्यवश हो गया था। उन्होंने उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग नियमित समय पर करवाने का निर्णय लेकर उत्तम उदाहरण पेश किया। वो कार्यक्रम अधिकारी जी हमारे प्रिय श्री रविंद्र प्रजापति जी हैं। जब कभी भी मैं इस वाक्य को सोचता हूँ तो मेरे होंठों पर चला आता है ये गीत।

मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमान जो हमारा

0: सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: ये पत्र आया है ग्राम भदौरा गुड़ा तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं अमित कुमार नामदेव और हेमलता नामदेव। आप लिखते हैं, 3 जून को हम सभी ने विश्व साइकिल दिवस मनाया।

जब साइकिल का जमाना था तब साइकिल चलाने वालों को इसके फायदे भी बहुत मालूम हुआ करते थे। जब हम पढ़ने जाया करते थे तो साइकिल चलाकर ही जाया करते थे। साइकिल चलाने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है और उसके हाथ पैरों में स्फूर्ति बनी रहती है। इसके साथ साथ साइकिल चलाने से बचत भी होती है। आजकल मोटरसाइकिल का जमाना है और इसमें पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ जाता है और साथ में दुर्घटनाएं भी होती हैं। व्यक्ति का जीवन साइकिल की तरह होना चाहिए और जिस प्रकार की साइकिल का पहिया निरंतर घूमता रहता है, निरंतर चक्र की तरह चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म है। आजकल साइकिल बहुत कम देखने को मिलती है और जब हम लोग स्कूल, हाट, बाजार या अन्य जगह पर जाते हैं तो साइकिल पर जाते हैं, तब हमको साइकिल की याद आती है तो हम गुनगुना उठते हैं ये गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का संयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जब आप गुनगुना उठे। प्रस्तुत करता थे रविन्द्र कुमार प्रजापति। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिला इन दिनों विकास, नवाचार और जन कल्याण के कई नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब जलूर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। ग्रीन बॉन्ड और जन भागीदारी मॉडल से तैयार यह देश का पहला सोलर प्लांट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेश्वर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंता को भी प्राथमिकता दी। मंडलेश्वर क्षेत्र के कतर गांव में उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। किसानों से सीधा संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में विकास कार्यों की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक, विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय क्षेत्रों के विकास और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। वहीं दूसरी ओर खरगोन ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल गंगा संवर्धन अभियान में जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में 7188 जल संरचना कार्य किए गए हैं, जिनसे लगभग 617 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहण की संभावना बनी है।

कलेक्टर भाव्या मित्तल ने इसे प्रशासन जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की साझा भागीदारी का परिणाम बताया है। जल संरक्षण के अलावा भारत सरकार के नीति आयोग के दिसंबर डेल्टा रैंकिंग में झिरन्या विकासखंड ने मध्य भारत जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा और तकनीक की बात करें तो खरगोन यहां भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। झिरन्या के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक स्पेस लैब का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस स्पेस लैब से जनजातीय विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा। नवाचार की यही सोच अब पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे रही है। खरगोन नगर पालिका ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरों से अगरबत्ती बनाने की अनूठी पहल शुरू की है। प्रतिदिन एकत्र किए जाने वाले फूलों से तैयार अगरबत्ती को कुंदा नाम दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मेहरजा स्थित निधिवन परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर जिले में मनरेगा के माध्यम से 3 लाख से अधिक पौधों का हरे क्षेत्र विकसित करने का संकल्प लिया गया। आबाद खेती की आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए जिले में कृषि रथ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों प्राकृतिक खेती संतुलित उर्वरक उपयोग और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए प्रशासन ने किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई है। जिले में यूरिया डीएपी एनपीके पोटाश और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कलेक्टर भव्या मित्तल लगातार समीक्षा कर रही हैं। मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने समय सीमा और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशासन की सक्रियता मत्स्य पालकों तक भी पहुंच रही है। जिले में रात्रि मछुआ चौपाल की अभिनव पहल शुरू की गई है। ग्राम दिजला में आयोजित चौपाल में मत्स्य पालकों को केज कल्चर बीमा योजना और मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति की जानकारी दी गई। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरगोन में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 174 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। इस दौरान युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं जिले की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊर्जा मिल रही है। देवी अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में नगर गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने महेश्वर मंडलेश्वर कसरावद और पड़वा सहित नर्मदा नदी के घाटों पर बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित का, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: मीडियम वीप 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रसावतरण कार्यक्रम के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं राजेश तिवारी रंजन, रमेश चंद्र सोनी योगा, राजेंद्र प्रसाद तिवारी स्वदेश, मंजुलता भारद्वाज, दिनेश कुमार दीक्षित और श्रीनारायण तिवारी। तो आइए सुने रसावतरण के अंतर्गत कवि गोष्ठी।
2: आकाशवाणी छतरपुर से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आप सभी श्रोताओं का मैं राजेश तिवारी रंजन हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज की इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत हो इससे पहले माँ शारदे को याद करते हैं और हमारे बीच चित्रकूट की पावन धरा से पधारे आदरणीय दिनेश दीक्षित संघर्षी जी हमारे बीच हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो माँ की वंदना प्रस्तुत करें।
3: बहुत बहुत आभार भाई साहब। छतरपुर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत वंदन और अभिनंदन। आइए माँ शारदे को एक छंद में निवेदित करता हूं जिससे आज की इस काव्य गोष्ठी की विधिवत शुरुआत हो सके। श्वेत कंज हार श्वेत हंस पे सवार अम्ब श्वेत सी सितार वस्त्र धारती है शारदे।
2: वाह वाह।
3: श्वेत कंज हार श्वेत हंस पे सवार अम्ब श्वेत सी सितार वस्त्र धारती है शारदे। काव्य कवि कानन में कोकिला सी कूक कूक कच्छ पी के तार झनकारती है शारदे।
2: क्या कहना।
3: ओ विनय विचार बीच विनय विवेक बुद्धि वाणी व्यवहार विस्तारती है शारदे।
2: वाह वाह वाह।

0: एक बुद्धि वाणी व्यवहार विस्तारती है सार दे और नेह को निहार देह गेह को विसार नित्य मेह जलधार सी पधारती है सार दे मेह जलधार सी पधारती है सार दे। माँ वीणापाणी को पुनः नमन करते हैं और पुनः आपके हवाले ये मंच।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे की आराधना के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करने के लिए हमारे बीच ललितपुर से पधारी हैं श्रीमती मंजू कटारे जी। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ।

0: नारी पुरुष के साथ कंधे से मिला कंधा सदा चलती अवन से व्योम तक उड़ती बड़ी धनवान है नारी।
1: आपके बीच ललितपुर से आदरणीय श्रीमती मंजू कटारे जी
2: और चार पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
1: स्वागत।
2: आज जब इंसान खास बनने की दौड़ में लगा हुआ है तब आवश्यकता इस बात की है कि हम सरलता ईमानदारी और मर्यादा को जीवित रखें। तब मैं चार पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।
1: स्वागत।
2: कि खास बन ना सको आम बन जाइए।
1: क्या बात।
2: खास

ये कि हम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में आदर्शों को उतारते नहीं हैं तो परिवर्तन नहीं होता है। चार पंक्तियां और आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ और कहती हूँ कि अपने जीवन में थोड़ा बदल तो करो, अपने

0: तो करो।
1: वाह,
0: कहते हैं कि भगवान की पूजा के लिए सिर्फ पूजा करना, हाथ जोड़ना काफी नहीं है। हमारा भाव ईश्वर तक तभी पहुंचता है जब हम मन से उनसे जुड़े और मन को पूजा में शामिल करें। तब मैं चार पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूं। आप
1: स्वागत
0: आशीष चाहूंगी कि प्रेम

0: नहीं,
1: बहुत खूब।
2: वो चार पंक्तियां, मैं अपनी प्रेमी के लिए, मैं अपने प्रेमी, मेरे प्रेमी सभी के प्रेमी हैं, सारी दुनिया के प्रेमी हैं, चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ।
1: स्वागत।
2: सभी का आशीष चाहूंगी।
1: स्वागत।
2: कि प्रीत की रीत है ये तुम्हारे नयन।
1: बा, बा, बा, बा।

0: नयन।
1: बहुत बढ़िया। अभी आपके बीच ललितपुर से आदरणीय मंजू कटारे जी अपना काव्य पाठ कर रही थी। अब अगले क्रम में मैं अगले कवि को बुलाऊं, इससे पहले आज के समाज के लिए, आज के बच्चों के लिए ये चार पंक्तियां। अगर माँ बाप की बातें बुरी लगने लगे तुमको, समझ लेना गलत पथ पर कोई ठगने लगे तुमको।
2: बहुत बढ़िया।
1: बुरे हो लाख खुद तो भी बुरा चाहे न संतति का, बुरे हो लाख खुद तो भी बुरा चाहे

0: तुमको गलत राहें न अपनाना, कभी बकने लगे तुमको। अगले क्रम में मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ वामदेव की धरती से पधारे हमारे बीच आदरणीय आरसी योगा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय संचालक जी। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ पीणा वाणी को प्रणाम करते हुए आइए अपने कुछ शब्दों में फिरवे हुए मुक्ताओं को पेश करता हूँ। मैं

0: क्या कहने?
1: नफरत के तूफानों से कि नफरत के तूफानों से कोई भी

0: कि सूरज की गर्मी से दिनमान पता चलता है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: कि सूरज की गर्मी से दिनमान पता चलता है और पता चलता है चंद्रमा से रहन का, और पता चलता है चंद्रमा से रहन का। किसानों की मेहनत से उगते हैं अन्न देव, किसानों की मेहनत से उगते हैं अन्न देव, और जवानों की जंग से होता है भला देश का, जवानों की जंग से होता है भला देश का। तो आइए मैं एक निर्गुण भजन पेश करने वाला हूँ।
1: स्वागत स्वागत।

0: वाह वाह क्या कहने?
1: सुन रे मनवा राम भजन कर, कि राम भजन बिन कुछ नहीं जग में, कि राम भजन बिन कुछ नहीं जग में, फिर खड़े पछताए बीते जन्म में, आंसू लिए सोचे फिर दूर गगन में,
0: वाह वाह वाह।

0: राम मर्जी बिना पात हिलते नहीं, राम मर्जी बिना पात हिलते नहीं। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कर्म भूमि से पधारे हमारे बीच आदरणीय दिनेश दीक्षित संघर्षी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: आदरणीय भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आकाशवाणी छतरपुर के श्रोताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन, और हमारी आकाशवाणी छतरपुर की स्थापना के 90 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, और इस बीच ये काव्य गोष्ठी जो आरंभ हो रही है, और आपने भूमिका बना दी है चूंकि चित्रकूट में राम है, राम उनकी कर्मभूमि है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उनके लिए ग्रंथ लिखा है, तो आइए एक मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूँ।
0: स्वागत।
1: यदि दशरथ बचन देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते।
0: वाह वाह वाह, क्या।
1: यदि प्रभु निवास न करते तो कामदिक

0: बनते।
1: वाह वाह वाह।
0: यदि नंदीग्राम बसते न भरत भ्राताया दर्श नहीं बनते। यदि कै कई अपयस ना चुनती राघो प्रभु राम नहीं बनते।
1: वाह वाह क्या
0: कहना। प्रभु राम नहीं बनते। आइए मैं थोड़ी काव्य और कविता की बात करता हूँ चार पंक्तियों से।
1: स्वागत।
0: क्या होती है कविता, क्या होता है काव्य? कि काव्य कवि की सृजनता का उपहार है। काव्य

0: आदीन है।
1: वाह वाह वाह।
0: देवता यक्ष किन्नर भी आधीन है, काव्य भावागमन का खुला द्वार है।
1: वाह वाह।
0: काव्य भावागमन का खुला द्वार है।
1: और
0: कविता क्या है कि कविता में है समाया ये सारा जहां, कविता में है समाया ये सारा जहां, है समाई धरा वा खुला आसमां। कविता खुद में सभी रंग समेटे हुए, कविता खुद में सभी रंग समेटे हुए, कविता सागर सी गहरी वायु सी चंचला।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: सागर सी गहरी वायु सी चंचला। और क्या कहना है कि कवि क्या होता है कि सरल नहीं है सिंधु से मोती निकालना।
1: वाह।
0: सरल नहीं है सिंधु से मोती निकालना, जो कल्पना को सत्य के आंचल में पालना।
1: वाह।
0: कारीगरी होती नहीं हर एक हाथ में, कि कारीगरी होती नहीं हर एक हाथ में, यूं भावना को शब्द के सांचे में ढालना।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और आइए एक बड़े छोटे से गीत से जोड़ता हूं आपको, चूंकि राजेश रंजन तिवारी जी से एक दिन वार्ता हो रही थी। एक बड़ी दुर्घटना हुई हमारे गांव में, एक माह एक बिटिया के विवाह हुआ और उसके बाद वो बिटिया का देहावसान हुआ, तो उस गीत से आपको जोड़ता हूं। और इस समाज को एक संकेत है और संदेश है इस गीत से कि रिश्तों को कैसे, हमें रिश्तों को मर्यादा मिलाना है, रिश्तों को कैसे पालना है। कि रिश्तों में जो छल करते हैं, रिश्तों में जो छल करते हैं, दाल न उनकी गलती है। रिश्तों में जो छल करते हैं, दाल न उनकी गलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। भाई साहब बंद सुने।
1: स्वागत।
0: कि तुझसे ना मुझको आशा है, तुझसे ना मुझको आशा है, ना ही कोई जिज्ञासा है। तुझसे ना मुझको आशा है, ना

0: हरमन रूपी सीता को मुस्कान तुम्हारी छलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है।
1: वाह वाह वाह, क्या कहना।
0: और दर्द सुनिए कि अपनी पीड़ा किसे सुनाऊं रिश्ते में, कि अपनी पीड़ा किसे सुनाऊं, क्या मैं तेरे दोष गिनाऊं। तूने मान रखा ना मेरा, तूने मान रखा ना मेरा, क्या मुंह लेकर के मैं जाऊं। चाहा था मैंने ही तुमको, गलती क्या थी कि चाहा था मैंने ही तुमको, इसमें मेरी गलती है। अरे संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। और आइए एक संकेत,
1: स्वागत,
0: कि बच के उनसे रहे जमाना, हिदायत, कि बच के उनसे रहे जमाना, जिनकी फितरत लाभ कमाना। कि बच के उनसे रहे जमाना, जिनकी फितरत लाभ कमाना, नहीं देखते तेरा मेरा, छोड़े ना वह कोई ठिकाना।
1: क्या कहना।
0: और रहती सदा जवान आदतें, उनकी कभी न ढलती हैं, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। और जिनकी फितरत में ये सब होता है, एक बंद, कितने घर डाके डारे हैं, ऐसे लोगों के लिए, कितने घर डाके डारे हैं, कितनों के मन अधियारे हैं, और कितनों ने था इनको पूजा, कितनों ने था इनको पूजा, कितनों के सपने मारे हैं। और इनके कारण कई दिलों में, इनके कारण कई दिलों में आग अभी भी जलती है। अरे संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। और एक उपसंहार देने का प्रयास करता हूँ अंतिम बंद में,
1: स्वागत,
0: कि जिसने स्वार्थ सदा साधे, भावों का मोल नहीं माना।
1: क्या बात।
0: एक संदेश है कि जिसने स्वार्थ सदा साधे, भावों का मोल नहीं माना, जिसने विश्वासों को तोड़ा, प्रेम कभी ना पहचाना। आजकल पीढ़ी पता नहीं किस दिशा में जा रही है। प्रेम एक शाश्वत विषय है। कबीर ने लिखा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो उसे एक संदेश है अंतिम बंद में, कि जिसने स्वार्थ सदा साधे, भावों का मोल नहीं माना, जिसने विश्वासों को तोड़ा, प्रेम कभी ना पहचाना। जीवन भर उनके मन में बस इच्छाएं ही पलती हैं, कि जीवन भर उनके मन में बस इच्छाएं ही पलती हैं। अरे संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है, संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। रिश्तों में जो

0: संबंधों की रेल समर्पण की पटरी पर चलती है। बहुत बहुत आभार, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे चित्रकूट की धरा से दिनेश जी थे संघर्षी जी को। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे कवि को जो अपनी सेवाएं देश की सीमा सुरक्षा में लगाया और इसके बाद सेवानिवृत्त होने के पश्चात साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। ऐसे महान कवि को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। धुंध छाई उजाला अमर चाहिए, धुंध छाई उजाला अमर चाहिए, है भ्रमित आज पीढ़ी डगर चाहिए, तंत्र स्थिर रहे मुल्क।

0: चाहिए आपके बीच बामदेव की धरती बांदा से आदरणीय राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी काव्य पाठ करते हुए।
1: बहुत बहुत आत्मिक आभार आदरणीय संचालक महोदय और आकाशवाणी के समस्त सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं चार पंक्तियां माँ शारदे चरणों में अर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ आरम्भ करता हूँ।
0: स्वागत।
1: श्रेष्ठ शक्ति पीठों में पूजित मैहर वाली शारदा माँ,
0: जय हो माँ।
1: भक्त जनों के संकट हरती दुर्गा काली शारदा माँ, अर्गृत कूट में आन बिराजी साधक सेवा करते हैं, भक्तों की अभिलाषा पूरी करने वाली शारदा
0: माँ। हो शारदा मैया की,
1: भक्तों की अभिलाषा पूरी करने वाली शारदा माँ। अभी आप देख रहे हैं कि वृक्षारोपण की बड़ी बात चल रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो वृक्षारोपण अगर किया जाए और कई लोग कहते हैं कि वृक्षारोपण का आगे उनको पुरस्कार दिया है, तो मेरा मानना है कि वृक्षारोपण केवल फोटो सेशन न हो, वो जब 3 साल 4 साल बाद वो वृक्ष तैयार हो जाए और उसको बाद फिर उसको पुरस्कार दिया जाए।
0: सही बात।
1: और निकल पड़े वृक्षारोपण को तरह तरह के माली, कोई लाया पौध सुहाना कोई लाया डाली,
0: क्या बात।
1: और थोप दिए मिट्टी में लाकर फिर फोटो खिंचवाई, देखो पांव रखने को भी बची न धरती खाली।
0: वाह वाह, क्या कहना, बहुत सुंदर।
1: अब मैं चलता हूँ थोड़ा गांव की ओर। जैसे ही गर्मियों की छुट्टी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन हमारा हो जाता है कुल्लू मनाली के लिए, कभी जम्मू कश्मीर के लिए, पर हम अपने बच्चों को गांव की संस्कृति से वंचित कर जाते हैं कहीं ना कहीं।
0: सही
1: बात। बाद में बोलते हैं कि बच्चा संस्कारित नहीं हुआ, गांव की संस्कृति के बारे में जानता नहीं है,
0: दादाई
1: को जानता नहीं है। चार पंक्तियां मुक्तक, उसके बाद एक गीत।
0: स्वागत।
1: और कथा प्रथा पौराणिक अब भी जीवित अपनी संस्कृति है, अब भाव उदार लिए सुचिता का जीवित अपनी संस्कृति है, और रीति रिवाजों से आती नित अपने पन की खुशबू है।
0: बहुत सुंदर।
1: सामाजिक समरसता उत्तम गांव की अपने प्रकृति है, सामाजिक समरसता उत्तम गांव की अपने प्रकृति है। तो आइए गांव की तरफ चलते हैं कि बच्चों को गांव कैसे ले चलना है। और शिमला नैनीताल मनाली जाए ना पहलगांव में,
0: और
1: शिमला नैनीताल मनाली जाए ना पहलगांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव
0: में, क्या
1: आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव, छोड़े एसी कूलर पंखे चले पेड़ की छांव में, छोड़े एसी कूलर पंखे चले पेड़ की छांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में, बाबा दाई काका काकी बुआ भतीजा भाभी देवर, बाबा दाई काका काकी बुआ भतीजा भाभी देवर, एक ही छत के नीचे रहते भिन्न भिन्न रिश्तों को लेकर, और सामूहिक परिवार की भाषा ने हिल गढ़ते गांव में, और सामूहिक परिवार की भाषा ने हिल गढ़ते गांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में, और दादी नानी के किस्से सुन रात में निंदिया आती है, बाबा की कहनूत भरी महफिल में रंग जमाती है, और खट्टी मीठी बातें सबके मन को भाती गांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में।
0: क्या बात।
1: गांव का भोजन अब भी बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होता है।
0: सही।
1: और सतुआ महुआ लस्सी मट्ठा पना आम का खाते हैं,
0: अरे
1: सतुआ
0: क्या
1: महुआ लस्सी मट्ठा पना आम का खाते हैं,
0: बेल
1: पुदीना शरबत बिरचुन भरता अंकरी भाते हैं,
0: हाय हाय हाय,
1: अरे चटनी रोटी खाकर भी अभाव न आया भाव में,
0: हाय हाय,
1: अरे चटनी रोटी खाकर भी अभाव न आया भाव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में।
0: वाह वाह वाह।
1: हम लोग प्रकृति से इतना जुड़े हुए गांव में कि चलती पछुआ पवन छतों पर एसी कूलर जैसा है, और घड़े का पानी मिलता घर घर ठंडा ठंडा फ्रिज सा है,
0: क्या बात।
1: और सिलबट

0: पीस ठंडाई पीते चाव से गांव में,
1: हाय हाय
0: और सिलबट्टे में पीस ठंडाई पीते चाव से गांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में।
1: बहुत बढ़िया।
0: और जहाँ पे घर घर भूचर नभचर परिजन जैसे रहते हैं, और जहाँ पे घर घर भूचर नभचर परिजन जैसे रहते हैं,
1: बहुत अच्छा,
0: दाना पानी पापस पक्षी खुश रहे हर दिन कहते हैं,
1: हाय हाय हाय क्या बात।
0: और दाना पानी पापस पक्षी खुश रहे हर दिन कहते हैं, पशु पक्षी का प्रेम आज भी जीवित अपने गांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में।
1: क्या कहना,
0: अंतिम बंद है इसका, कि सही राह दिखलाते गुरजन चौपालों में रामायण, और सही राह दिखलाते गुरजन चौपालों में रामायण, जीवित रखे संस्कृति अपनी करें सभ्यता का गायन।
1: क्या बात।
0: और खेल खेल में बच्चे सीखे मिलना जुलना गांव में,
1: वाह वाह वाह,
0: बच्चे सीखे मिलना जुलना गांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में।
1: क्या कहें,
0: आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में, शिमला नैनीताल मनाली जाए ना पहलगांव में, आओ बच्चों अब की छुट्टी चलते अपने गांव में, छोड़े एसी कूलर पंखे चले पेड़ की छांव,
1: आओ बच्चों
0: अब की छुट्टी चलते अपने गांव।
1: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी को, जो बामदेव की धरती बांदा से आए हैं, और अब एक ऐसे कवि हैं जो बहुत ही मनहर हैं, और उनके गले में साक्षात माँ सरस्वती निवास करती हैं। वो चित्रकूट की पावन धरा से हमारे बीच पधारे हैं। जैसा कि अभी आपने राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी को सुना, उन्होंने गांव की बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय श्री नारायण तिवारी जी, जो चित्रकूट की पावन धरा से आते हैं, अब शहर बसने लगा है रोज मेरे गांव में,
2: अब शहर बसने लगा है रोज,
1: अब शहर बसने लगा है रोज मेरे गांव में, धूप अब लगने लगी है वट की शीतल छांव में,
2: धूप अबने लगी है वट की शीतल,
1: खो दिया है चैन अपना चांद तारे चाह में, खो दिया है चैन अपना चांद तारे चाह में, मारते हैं ले कुल्हाड़ी लोग अपने पाँव में, मारते हैं ले कुल्हाड़ी लोग अपने पाँव में। आपके बीच चित्रकूट की पावन धरा से पधारे आदरणीय श्री नारायण तिवारी जी।
2: आदरणीय संचालक महोदय का बहुत बहुत हार्दिक आभार। मैं छतरपुर आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूं और सीधे सीधे अपने कपाट से आपको जोड़ता हूं। एक सवैया छंद प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद
1: स्वागत
2: सवैया छंद, फिर एक गीत। तब से भव बंधन छूट गए,
1: वाह,
2: जब से पद कंज बसे मन,
1: क्या बात,
2: रसना जब से हरि नाम जपे, कल के ना भुजंग डसे मनु में,
1: बहुत सुंदर, बहुत
2: नर तो भव कूप पड़े ना कभी, जब रूप अनूप लसे मन में, जिसने सब सौंप दिया हरि को, वो ही निर्बाध हंसे मन में, जिसने सब सौंप दिया हरि को। और एक दृश्य आपके समक्ष रखता हूँ।
1: स्वागत, स्वागत।
2: बजती मुरली यम

0: गए चित को हम तो बिन शीश शरीर से है चित चोर चुराए गए चित को हम तो बिन शीश शरीर से
1: है। वाह वाह बहुत सुंदर।
2: और मैं दीक्षित जी के जस्ट विपरीत गया विरुद्ध में और सुने
1: स्वागत स्वागत
2: प्रस्तुत करता हूँ
0: कि मैंने हिम्मत कभी ना हारी।
1: हाय हाय।

0: को।
1: क्या बात, क्या
0: झुका
1: बात।
0: मैं केवल उसको जिसको झुकती दुनिया सारी, हिम्मत कभी नहारी मैंने,
1: कभी नहारी
0: आ कोई पीछे टकराती
1: क्या कहना?
0: कोई

0: हिम्मत कभी ना हारी
1: क्या कहना
0: और मैंने जीवन जिया कैसे।
1: बहुत सुंदर।
0: नहीं दिलों को मैंने बांटा,
1: अरे
0: हंसते हंसते जीवन काटा, अगर

0: हारी मैंने,
1: वाह वाह वाह,
0: हिम्मत कभी न हारी,
1: क्या कहना, वाह,
0: हिम्मत कभी,
1: बहुत ही शानदार प्रस्तुति अभी आपके बीच चित्रकूट की धरा से हमारे बीच,
0: कभी न हारी,
1: वाह वाह वाह वाह वाह। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय श्री नारायण तिवारी जी को।
2: आइए अभी तक जो आज की इस कवि गोष्ठी की नौका को खे रहे थे, जो पालनहार थे और इसे लास्ट तक किनारे तक पहुंचाने का काम किया उन्होंने, और आइए उनका भी काव्य पाठ शेष है, जो महर्षि वामदेव की भूमि बांदा से आते हैं, राजेश तिवारी रंजन जी, जो बहुत ही सुमधुर गीतकार हैं, और उसके साथ साथ उनके गीतों में जो भाव पक्ष और कला पक्ष जो प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है, तो उनके लिए चार पंक्तियां में उनके परिचय में शायद हो सकती हैं कि चंद शब्दों में विषय का सार रखते हैं, कि चंद शब्दों में विषय का सार रखते हैं, हर विधा से ये सदा व्यवहार रखते हैं, और लेख इनके भावना का मर्म कहते हैं, कि लेख लेख इनके भावना का, लेख इनके भावना का मर्म कहते हैं, और लेखनी में ये खड़क सिधार रखते हैं, लेखनी में ये खड़क सिधार रखते हैं। आइए जिनका गीत पूरे देश में वायरल हुआ बूढ़ा बागवान, तो उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अग्रज भ्राता राजेश रंजन तिवारी जी को, आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अनुज दिनेश दीक्षित संघर्षी जी। सर्वप्रथम आकाशवाणी छतरपुर के सभी सुधी श्रोताओं को मैं राजेश तिवारी रंजन नमन वंदन करता हूँ, और माँ के चरणों में ये चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ।
3: बहे नित काव्य की गंगा, यही वरदान दे दो माँ,
2: है
3: हमारी लेखनी को छंद पिंगल ज्ञान दे दो माँ। तमस घन घोर है छाया, जला दो।

0: न हो पथ भ्रष्ट।
1: क्या कहना है?
0: ऐसा भान दे दो माँ। तो ये एक गीत है जो आज के परिवेश पर ये कहीं ना कहीं फिट बैठेगा।
1: स्वागत भैया।
0: और इसमें बहुत कुछ कहने की कोशिश की है कि आजकल हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं। टूट रहे नित रिश्ते नाते, रिश्तों में तकरार बहुत है।
1: बेशक
0: टूट रहे नित रिश्ते नाते, रिश्तों में तकरार बहुत है। प्रेम दीवारें ढहती निस दिन, इनमें पड़ी दरार बहुत है।
1: बेशक
0: वैभव संपत्ति बहुत है,
1: बेशक
0: फिर भी दिल कमजोर हमारा। दीनहीन की देख दशा नित, देता दिल झकझोर हमारा। अंतस में है कपट भरा अब, अंतस में है कपट भरा अब, बाहर बाहर प्यार बहुत है। टूट रहे नित रिश्ते नाते, रिश्तों में तकरार बहुत है।
1: क्या कहने हैं, क्या कहने?
0: प्रेम दीवारें ढहती निस दिन, इनमें पड़ी दरार बहुत है। आगे है
1: स्वागत भैया।
0: भाग दौड़ में लगी जिंदगी,
1: बेशक
0: जाने क्या हुआ जमाने को।
1: जाने क्या हुआ
0: भाग
1: जमाने को।
0: दौड़ में लगी जिंदगी, जाने क्या हुआ जमाने को। समय किसी के पास नहीं है, अब मिलकर व्यंजन खाने को।
1: क्या कहने, क्या कहने?
0: और विरले ही रिश्ते मिलते हैं, विरले ही रिश्ते मिलते हैं, जिनमें हो एतबार बहुत है। टूट रहे नित रिश्ते नाते, रिश्तों में तकरार बहुत है। प्रेम दीवारें ढहती निस दिन, इनमें पड़ी दरार बहुत है। और अगला बंद है,
1: स्वागत है।
0: स्वार्थ भरी आंधी के पीछे तेज दौड़ता है यह मानो।
1: बेशक
0: स्वार्थ भरी आंधी के पीछे
1: तेज दौड़ता
0: है यह मानो। स्वार्थ सिद्धि जब ना हो पाए, फिर बन जाता है यह दानो। स्वार्थ सिद्धि जब ना हो पाए, फिर बन जाता है यह दानो। ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे, ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे, मानवता लाचार बहुत है। टूट रहे नित रिश्ते नाते, रिश्तों में तकरार बहुत है। प्रेम दीवारें ढहती निस दिन, इनमें पड़ी दरार बहुत है।
2: क्या बात।
0: और अंतिम बंद रखता हूँ कि
1: स्वागत
0: हम लोगों को क्या करना है।
1: स्वागत स्वागत।
0: अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना भी फर्ज निभाना है।
1: अपनी अपनी जिम्मेदारी,
0: अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना भी फर्ज निभाना है। समरसता भाईचारा हो, अब समृद्ध राष्ट्र बनाना है।
1: क्या कहने हैं?
0: समरसता भाईचारा हो और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। रंजन हंसने के पल ढूंढे,
2: क्या बात।
0: रंजन हंसने के पल ढूंढे, रोने के आसार बहुत हैं।
1: रोने के आसार बहुत
0: रहे।

0: वाह बहुत ही अद्भुत काव्य पाठ, रिश्तों की बात की और सच में आज का जो मानव है वो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता और रिश्तों को निभा नहीं पा रहा, बहुत ही ज्यादा समस्या में है। और आज रिश्तों का इतना सुंदर गीत आपके द्वारा पढ़ा गया और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में ललितपुर से, जो बहुत ही सुंदर शहर से, जो बांधों का शहर है, उस शहर से हमारे बीच में बहन मंजू कटारे जी हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ एक गीत के लिए।
1: प्रेम की गजल,
2: स्वागत
1: जो सौहार्द और आत्मिक जुड़ाव से भरपूर है।
2: बहुत बड़े
1: शब्द तो एक माध्यम है, अगर मेरा भाव आप सबके मन तक पहुँचे और आप मेरी गजल को गुनगुनाएं तो मेरी गजल को जिंदगी मिल जाएगी।
2: स्वागत स्वागत।
1: गजल एक प्रस्तुत करती हूँ आप सबके बीच में कि कैसे

0: क्या कहना,
1: तकती रहती हूँ मैं तेरी तस्वीर को।
0: वाह वाह वाह, क्या कहना।
1: कैसे लिखूं मोहब्बत की तहरीर को। और कहते हैं दिल तलवारों से नहीं जीते जाते हैं, दिल प्रेम से जीते जाते हैं। तब पहला शेर है मेरा,
0: स्वागत।
1: कि जिसमें शामिल नहीं प्यार तेरा प्रिय,
0: वाह वाह वाह।
1: जिसमें

0: क्या कहना।
1: सबसे बड़ा धर्म है दिलों को जोड़ना
0: जी।
1: तब तीसरा मेरा शेर है कि तुम हमें मिल गए, आपका शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह।

0: कहना
1: अब सवारूंगी मैं अपनी तकदीर को,
0: क्या शेर है वाह,
1: कैसे लिखूं मोहब्बत की तहरीर को, उन नफरतों से भला आज किसका हुआ।
0: वाह,
1: युद्ध के बाद में भी शांति की ही आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि नफरतों से भला आज किसका हुआ, फेंक दो हाथ से आप शमशीर को,
0: वाह वाह वाह,
1: फेंक दो

0: पीर को। और आखिरी शेर मेरा, तुम इबादत में शिद्दत तो शामिल करो।
1: क्या बात,
0: जब तक सच्ची इबादत नहीं होगी दिल में करुणा, मन में करुणा नहीं जाग सकती।
1: बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है।

0: शामिल करो।
1: क्या कहना,
0: फिर बढ़ाएंगे वो आपके चीर को।
1: हाय हाय हाय, क्या
0: बढ़ाएंगे वह आपके चीर को। कैसे लिखूं मोहब्बत की तह।

0: को
1: वाह भाई
0: कैसे लिखूं मोहब्बत की तहरीर को। और छतरपुर आकाशवाणी के श्रोताओं, आप सब मुझ पर स्नेह बनाए रखिएगा, मेरी भावनाओं के लिए इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, आप सभी का धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी आप जिन कवियों को सुन रहे थे, एक बार उनका पुनः परिचय। चित्रकूट की पावन धरा से हमारे बीच काव्य पाठ कर रहे थे आदरणीय श्री नारायण तिवारी जी, आदरणीय दिनेश दीक्षित संघर्षी जी, और ललितपुर की पावन धरा से हमारे बीच बहन मंजू कटारे जी, और साथ ही बांदा ऋषि बामदेव की धरती से आदरणीय आरसी योगा जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी स्वदेश जी, और मैं स्वयं राजेश तिवारी रंजन बांदा से आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रसावतरण कार्यक्रम के अंतर्गत कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे राजेश तिवारी रंजन, रमेश चंद्र सोनी योगा, राजेंद्र प्रसाद तिवारी स्वदेश, मंजुलता भारद्वाज, दिनेश कुमार दीक्षित और श्री नारायण तिवारी। ये प्रसारण आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से किया गया। मीडियम वीक पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की ओर और सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। तो आइए लिए चलें आपको आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र की ओर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का कार्यक्रम सुनीता सिंह की प्रस्तुति है।
1: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। ये जो बरसता बादल है, ये जो हहराता सागर है, धरती है धरती है। ये जो घनी छांव है, ये जो नदी बहाव है, ये जो असीम ठहराव है, ये जो सुंदर रचाव है, धरती है धरती है। ये जो जल एक दर्पण है, ये जो हवा में सरगम है, ये जो जल में कलकल है, ये जो नभ में हलचल है, धरती है धरती है। ये जो नील गगन में लाली है, ये जो झूमते परिंदों की टोली है, ये जो बागों में कोयल सी बोली है, ये जो शरद में पावन दिवाली है, ये जो वसंत में बहुरंग होली है, धरती है धरती है। तो आज समय की इसी पुकार को सुनते हुए हमने तय किया कि बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आप हमें बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर, और पर्यावरण बचाने के लिए वो एक छोटा सा संकल्प कौन सा है जिसे आप आज से अपने जीवन में अपनाने का वचन देंगे। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
2: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
1: भागचंद साहू जी कैसे हैं?
2: बहुत बढ़िया है दीदी, आप ठीक हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं।
2: और
1: हम...
2: मौसम कैसा है भोपाल का फिलहाल? अभी
1: मौसम भी बढ़िया है बादल छा गए हैं तो गर्मी से कुछ निजात है जी। हालांकि बहुत तूफान की वजह से, आंधी पानी की वजह से बहुत पेड़ भी गिरे और बहुत सी बातें हुई, लेकिन मौसम जरूर ठंडा हो गया है। तो भागचंद जी, हम जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
2: दीदी हम तो ये कहते हैं, जैसे ये प्रदूषण हो रहा है गाड़ियों की वजह से हो रहा है, बहुत हानिकारक है।

0: बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैटरी वाली गाड़ी है वो चला ज्यादातर, वो जो प्रदूषण करते हैं बहुत हानिकारक है। देखो दिल्ली में क्या माहौल है, प्रदूषण के कारण हालात बहुत गड़बड़ है। हम तो ये कहना चाहते हैं श्रोताओं से कि प्रदूषण ना करें और एक संकल्प जरूर लें, हमें एक पौधा जरूर लगाना है अपने नाम से।
1: तो भागचंद जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके भीतर एक चिंता है और आपने वायु प्रदूषण की बात की। आप कह रहे हैं कि
0: बहुत बीमारियां चल रही हैं
1: और ये जो वायु प्रदूषण है इससे श्वास संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं।
0: होता है, बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऑक्सीजन तो कहते हैं कि भाई प्राणवायु है वो, तो उसका स्वच्छ रहना साफ रहना जरूरी है। तो आपका संकल्प है कि आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे, तो कब लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे या नहीं? सिर्फ पौधा लगाना दायित्व इससे पूरा नहीं होता,
0: बिल्कुल
1: है ना, वो पौधा बड़ा भी हो। तो भागचंद साहू जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज के विषय पर आपने एक सार्थक विचार रखा और अपना संकल्प साझा किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संकल्प है कि आप एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपको, आपका संकल्प जरूर पूरा हो और कुछ और लोगों को भी प्रेरित कीजिएगा।
0: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल
1: जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद साहू जी, बहुत आभार कि आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: हरिशंकर धाकर, ग्राम आकुर्ती, जिला शिवपुरी।
0: हरिशंकर धाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कितने दिन के बाद आपने फोन किया है?
1: मेरा कॉल तो पहली बार ही लगा है, 4-5 साल से ट्राई कर लिया था, लेकिन अभी कॉल लगा पहली बार मेरा।
0: अरे वाह, मतलब आप हमारे नए श्रोता हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके भीतर किस तरह की चिंताएं हैं और आप कौन सा एक संकल्प आज इस मंच पर रखेंगे जिस पर आप अमल भी करेंगे।
1: पर्यावरण के लिए हमको एक तो साफ सफाई रखना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का यूज नहीं करना चाहिए।
0: क्या करना चाहिए ये तो बहुत से लोगों को मालूम है, है ना, लेकिन आपका क्या संकल्प है? आज के दिन से आप कौन सा एक संकल्प लेंगे ये हम जानना चाह रहे थे।
1: मेरा संकल्प यही है कि हम एक हर साल नया पौधा लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, जो कुछ पेड़ काटता उसे मना करेंगे।
0: बहुत अच्छी बात है जी। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे आप ये कह रहे हैं, कपड़े की थैली का उपयोग
1: नहीं करेंगे।
0: जी जी, तो हरिशंकर धाकड़ जी, आपकी बातें हमारे दूसरे श्रोताओं तक भी पहुंची हैं और मुझे लगता है कि जो आपने महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि आप स्वयं तो पौधा लगाएंगे ही, वृक्षारोपण करेंगे, उसे बड़ा करेंगे, और जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी एक निगरानी आपकी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग

0: करेंगे। कपड़े के थैले वैसे भी हम पहले प्रयोग में लाते थे, उन्हें दोबारा लाने की आवश्यकता है। मालूम सबको सब है, है ना, आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम उपाय सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हम उन्हें अमल में नहीं लाते हैं। जी, हम अमल में नहीं लाते, इसलिए हमने सोचा कि आज एक संकल्प हमारे श्रोताओं की तरफ से जरूर लिया जाए। तो हरिशंकर धाकड़ जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक प्यारा सा गीत आप तक भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी नमस्कार बहन जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजमेर, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: सुरेश कुमार सैनी जी कैसे हैं?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: अच्छा,
1: और इस समय अच्छी गर्मी बहुत तेज पड़ रही है।
0: बिल्कुल, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी और इसी बात से जुड़ती हुई हमारी बात है आज की। हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर हम बात कर रहे हैं जिसका दुष्परिणाम
1: रखा है आपने।
0: जी क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण जो प्रदूषण फैल रहा है वो सब अपने ही द्वारा फैल रहा है, और जो पानी है पानी की भी बहुत बचत करनी चाहिए, पेड़ भी लगाने चाहिए।
0: जी,
1: और जो जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो जैसे अगर बच्चे भी जा सकते हैं कहीं जाना है तो ऐसे नहीं अगर अपन जंगल जा रहे हैं तो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।

0: ये एक बहुत अच्छा संकल्प है और ये सभी को करना चाहिए। सुरेश कुमार सैनी जी, हमें अच्छा लगा कि पानी को लेकर आपकी चिंता है और इस बार जो गर्मी पड़ी है, मुझे लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण की बात इस गर्मी ने जन जन तक पहुंचाई है, है ना?
1: जी बिल्कुल। देखिए, कभी बारिश हो जाती है अचानक, बेमौसम बारिश हो जाती है,
0: जी
1: ये सब पर्यावरण मतलब उसी का असर है।
0: बिल्कुल, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लेशियर हैं वो पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, है ना?
1: तो वो भी घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो अगर पिघल रहे हैं तो ये एक बहुत चिंता की बात है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर मनुष्य को, हर इंसान को कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़ी बात है, है ना? और मैं ये महसूस करती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन कार्य रूप में बहुत कम लोग इसमें सक्रिय हो पाते हैं।
1: बिल्कुल, बातें तो बहुत होती हैं, बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन करते नहीं है।
0: तो आप बताएं कि आप क्या करेंगे इस दिशा में?
1: जी, हमारा तो हर वर्ष का यही संकल्प रहता है कि हम दो चार पेड़ हर वर्ष लगाते हैं।
0: तो आप
1: महीने में अभी गड्ढे खोद कर डाल दीजिए और जो खेतों के किनारे में आ जो मलाई रहती है
0: जी,
1: पे लगाते हैं।
0: जी, आप पेड़ लगाते हैं, उन पेड़ों को बड़ा करने का दायित्व भी निभाते हैं और आपने पानी की बचत की बात की, जो कि बहुत आवश्यक बात है। कोई भी संसाधन जो आपको दिया गया है, अगर उसका आप बहुत बेफिक्री से उपयोग करते हैं तो फिर वो कम पड़ ही जाता है, है ना? इसलिए आवश्यक है कि हर चीज को जरूरत के हिसाब से हम उपयोग में लाएं।
1: जी बिल्कुल। कुछ लोग क्या है कि ये नल सप्लाई आती है, तो मैंने भी देखा है अपने यहाँ, तो पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद खुली छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसको बंद नहीं करते हैं।
0: बंद नहीं करते हैं, जो ब्रश करते हैं, जब तक ब्रश करते हैं तब तक नल चलता रहता है, वो भी पानी बर्बाद होता है, है ना?
1: किसी की तो पैडे गाड़ी धुलती है।
0: और जो घरों में हम पानी का उपयोग करते हैं सब्जियां धोने में, या जो अपने रसोई घर में जो पानी बच जाता है उसका उपयोग हम अपने बगीचे में कर सकते हैं, पेड़ों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रयास हैं जो किए जा सकते हैं और हर इंसान जब इसमें शामिल होगा तभी पर्यावरण संरक्षण की बात सार्थक हो सकेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो सुरेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
1: विकास आर्य प्रयागराज से।
0: विकास जी बहुत स्वागत करते हैं आपका, हम कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज के विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: आज के विषय पर हम यही कहना चाहेंगे मैम, जो आज के प्रदूषण जो फैलते हैं, ये हम सब अनुरोध करते हैं कि कुछ जो होते हैं ये धुआं वगैरह और जो साफ सफाई प्लास्टिक, ये ना करें प्रदूषण, इससे हमारे बहुत से पर्यावरण पर ये नुकसान हो रहे हैं। और लोग कहीं भी प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं, ये कभी गलता नहीं है और इससे बहुत ही हमारे शरीर को हानिकारक हो सकता है।
0: हमारे धरती के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, है ना, जल स्रोतों के लिए भी अच्छा नहीं है
1: जी। और ये भी कहना चाहेंगे कि पानी कम से कम हो सके तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर बूंद से करें तो कोई भी चीज भर सकती है ना।
0: बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जल का अनावश्यक जो अपव्यय है वो ना करें, है ना, उसको सदुपयोग करें पानी
1: का। कहीं पर हम देखते हैं कि लोग पानी बहुत ही बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हमारे पास पानी है तो अब हमें कोई कमी ही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब एक कहावत है कि उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, मतलब जैसे कि पानी एक मूल्यहीन चीज है ना, एक मूल्यहीन तत्व है, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।
1: जबकि नहीं होगा तो हमारा फिर ये जीवन जी बहुत ही मुश्किल से कटेगा।
0: बिल्कुल, जबकि अब समझने की बात यह है कि जिस तरह से आप पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, उससे ज्यादा कीमती अब पानी है, तो पानी की तरह बहाना ये बात ही अब बेमानी हो चुकी है। आपको बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करना चाहिए,
1: इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसीलिए हम कहते हैं कि तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: बिल्कुल। तो विकास जी ये बताएं कि आपका क्या संकल्प है, या कई संकल्प हो तो वो भी बताएं, कि आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं आज?
1: बिल्कुल, हम तो यही संकल्प लेना चाहेंगे मैम कि हम खुद से भी अपने आसपास भी यही कहते हैं कि सब लोगों को कोई भी चीज हो उसे बहुत कम से कम मात्रा में लेना चाहिए।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि आप हर संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। तो
1: कहीं कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि लोग बिजली फर्जी खर्चा करते हैं, कोई भी चीज चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास भी ये चीज कहते हैं कि सब लोग जितना काम है उतना ही खर्च कीजिए।
0: बिल्कुल। और अभी चूंकि देखिए गर्मियों का समय है, तो अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि हर कमरे में पंखा, कूलर या एसी चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्य एक या दो कमरे में रहें और उसमें ही एसी कूलर चलाएं, इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
1: जी हाँ, लोगों को ये लगता है कि अब ये हमारे पास है तो कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये आता है
0: जी। तो विकास जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, हम आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी ग्राम बनेता तहसील बंदा जिला सागर से महेंद्र कुमार सेन बात कर रहे हैं मैम।
0: महेंद्र सेन जी
1: होता है।
0: महेंद्र सेन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: जी मैम, लाइफ में पहली बार लगा है, वो बड़ी खुशी हुई हमारा।
0: अच्छा, पहली बार फोन लगा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, और जानना चाहते हैं कि आज के विषय पर आप क्या कहेंगे।
1: जी मैम, हमारे कुछ भी है कि सबसे पहले तो अपने लिए बनों के लिए आग से बचाना चाहिए, और हर श्रोता के लिए पेड़ जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए।
0: वनों को आग से बचाना चाहिए, महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल।
1: और नदी है, नाले हैं, इन गंदगी मत रखो, क्योंकि ये दूसरे तो होंगे तो अपन बीमार पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो जल स्रोत हैं अगर वो गंदे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है मनुष्य के लिए और जीव जंतुओं के लिए भी, है ना?
1: जी, क्योंकि उसमें गाय वगैरह हैं, कोई भी मवेशी पानी पीता है तो सर वो खत्म हो जाते हैं, पॉलिथन वगैरह हैं जो आती हैं बैठ के जो उसमें, तो ये सर बहुत जटिल समस्या है।
0: बिल्कुल, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनका जो उपयोग हम अब भी कर रहे हैं ये बहुत चिंता की बात है, और सारी जानकारी होने के बावजूद उसका उपयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक बात है।
1: और पेड़ भी लगाना चाहिए हर इंसान के लिए।
0: जी, तो ये तो आपने बताया है कि क्या करना चाहिए, और आप चिंतित हैं जंगलों को लेकर और धरती के स्वास्थ्य को लेकर। प्लास्टिक की आपने बात की है, पानी की आपने बात की है, साफ सफाई की बात की है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपके क्या क्या संकल्प होंगे, आप क्या क्या करेंगे आज से, ये बताइए।
1: क्योंकि मैम हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और वनों की देख रेख करते रहते हैं, और हम अपनी क्यारी वगैरह में हर चीज लगाए, आम वगैरह इनके तो पानी आने देते हैं और साफ सफाई का फुल ध्यान रखते हैं।
0: जी जी जी
1: जी मैम,
0: तो जाहिर सी बात है कि पेड़ लगाने का काम तो यूं ही होता है आपसे, और जो आपने बात की है जल स्रोतों की सफाई की, उसमें जरूर आप अपना योगदान दे सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल मैम, और सभी के लिए देना चाहिए।
0: जी, तो महेंद्र सेन जी, आज आपने हमें फोन किया, हमसे बातचीत की, इस विषय पर अपने विचार रखे, आपका हृदय से आभार।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैम जी। मैं जय नरसिंह FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूं मैम जी।
0: कमलेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम। आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के विषय पर एक सार्थक विचार आप रखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को देखकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं और क्या संकल्प है आपका पर्यावरण संरक्षण को लेकर।
1: देखिए मैम जी, मैं श्रोता होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और बात पर्यावरण की चल पड़ी है तो मैम जी बहुत ही अनुकूल विषय है। मैम जी मैं तो ये कहूँगा कि हमने अभी पर्यावरण दिवस मनाया तो मैं सबसे पहले आपको एक अनुकूल बात बता दूं कि मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ मैम जी।
0: क्या बात है
1: बहुत अच्छी बात। मेरे पास वीडियो कॉल होता ना मैम जी, सचमुच मैं वीडियो कॉल करता और आप रेडियो में भी लोग देख पाते मुझे और आपको। पीपल का वृक्ष है, इसकी छांव में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लोग खड़े होकर मैम जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: तो मैम जी देखिए, मैं तो वृक्ष लगाता ही रहता हूँ, मैंने एक बरगद का वृक्ष लगाया था।
0: कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं होती हैं?
1: देखिए मैम जी, आज वर्तमान में देखी जाए तो ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है तो सबसे दायित्व बनता है कि ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल न करें।
0: बिल्कुल,
1: बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
0: बिल्कुल, मनुष्य को तो समस्या होती ही है, मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, उनका भी जो प्रजनन चक्र है वो प्रभावित होता है। तो प्रदूषण कोई भी हो, पूरा जीव जगत उससे परेशान होता है और उस पर नकारात्मक प्रभाव उसका होता है।
1: देखिए मैम जी, आपने ये बात रख दी है, मैं ये बात बोलने वाला था कि मनुष्य ज्यादा हैरान मैं समझता हूँ प्रकृति से, प्रकृति को लेकर के। यदि प्रकृति अपनी पे आ जाए तो मनुष्य को तो खत्म कर देगी। तो मनुष्य का दायित्व बनता है कि प्रकृति को बचाए रखे, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी माता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की है।
1: इन पांचों चीजों को बचाने का दायित्व एक मनुष्य का बनता है कि इसे बचा के रखें। जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े विशाल कह सकते जीव का है,
0: तो क्या है कि संपूर्ण जीव जगत जो है
1: अनुकूल है मैम जी।
0: संपूर्ण जीव जगत का संरक्षित रहना, सुखी रहना आवश्यक है मनुष्य के लिए, है ना। तो कमलेश जी आपने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है चिंता का विषय है और हमें प्रकृति के हर तत्व की रक्षा करनी चाहिए, आपका क्या संकल्प है, आप क्या करेंगे?
1: तो मैम जी संकल्प मैं तो जल को बचाता हूँ ज्यादातर, मैं जल की तरफ ज्यादा आश्रित रहता हूँ क्योंकि जल है तो कल है।
0: क्या बात है, तो जल संरक्षण के लिए
1: मुझे कोई एक ही बूंद पानी बहाता ना तो मुझे गुस्सा आती है।
0: बिल्कुल, टोकना आवश्यक होता है क्योंकि पानी को लेकर हमारा जो व्यवहार है वो बहुत बेपरवाह रहा है शुरू से। अब लेकिन पानी अपनी कीमत बता रहा है और बता रहा है कि जल धन है, समृद्धि है, निधि है, उसे उस तरह से देखना चाहिए जैसे हम किसी खजाने को देखते हैं, संरक्षित करते हैं।
1: बिल्कुल मैम जी, मैं तो एक बात रखूंगा कि जल है तो कल है वरना चारों तरफ हलचल है, चारों तरफ हलचल है तो वीरान आने वाला कल है। जल ही तो जीवन है, जीवन को बेकार मत बहाओ, अभी समय है मानव तुम जल के प्रति चेत जाओ। जल बिन बताओ कैसे मिलेगी 2 जून की रोटी, जल से है आपके हमारे जीवन की संगोष्ठी। खिल तो जाएगा यह कमलेश बिन पानी के कीचड़ में, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर चूंकि जबकि इत्यादि के चलते कैसे बनेगी कीचड़ बिन जल में।
0: क्या बात है।

0: कमलेश जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया एक कविता के माध्यम से, जल संरक्षण की बात की, तो कुछ बारिश की फुहारें आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।
1: थैंक

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: नेमचंद जैन।
0: नेमचंद जैन जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दमोह से।
0: आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण की और जानना चाहते हैं कि इस समय जो पर्यावरण की स्थिति है, तेज गर्मी, बाढ़, भूकंप, है ना, ये स्थितियां देखने को मिलती हैं और मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई है, जल की कमी भी होती है, जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, तो पर्यावरण की स्थिति देखकर आप
1: क्या देख हो रही है? इसीलिए तो वो जल की कमी होती है, गर्मियों में होती है और प्राय जल की कमी थी।
0: जी, तो इस पूरे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में क्या चिंता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कौन सा एक उपाय करेंगे, क्या संकल्प है आपका?
1: दिल में ये चिंता है कि जंगल कटते जा रहे हैं, जंगलों से ये सब पेड़ों से बांटा जाकर का खिंचाव होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सरकार को इसमें थोड़ी रोक लगाना चाहिए।
0: सरकार तो रोक लगाती ही है। आपने जंगल कटने की बात की है, ये वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि जंगल जो है वो सभी जीव जंतुओं की आश्रय स्थली है, है ना, सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें, पेड़ पौधे भी वहां हैं। आपने बताया है कि बादलों को खींचकर वो ले आते हैं पेड़ और बारिश होती है, तो बहुत आवश्यक है कि हमारे जंगल सुरक्षित रहें ताकि जैव विविधता भी हमारी बनी रहे। तो आप कौन सा एक संकल्प लेंगे नेमचंद जी?
1: यही संकल्प है हमारा कि कम से कम जंगलों की कटाई हो।
0: और पौधे लगा सकते हैं, आपने पेड़ों की बात की है, तो जाहिर
1: हम अपने खेत में आम के पेड़ लगाने के मूड में थे।
0: तो आपने बताया कि आप पेड़ लगाने के मूड में हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर बहुत से पेड़ लगाइए, उनको संरक्षित कीजिए, बड़ा कीजिए। तो नेमचंद जी, आज आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मैं मनीष निमाड़े।
0: तो मनीष जी, आज का विषय जो है वो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं पर्यावरण को लेकर आपके भीतर हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका क्या संकल्प है।
1: जी, पर्यावरण देखिए हम लोगों का एक कहें कि हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। अगर ये पर्यावरण कमी हुई, नष्ट हुआ या धीरे धीरे क्षीण होते होते खत्म सा होने लगेगा, तब बहुत विपदाएं आएंगी। विपदाएं आनी शुरू हो गई, प्रकृति अपना संकेत हर समय दे रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम मानव प्रजाति जो है उसकी तरफ कुछ दिन मना लेते हैं या पर्यावरण दिवस मनाकर और फिर भूल जाते हैं और कोई चिंता नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सरकार सब करेगी, लोग करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत हमको खुद से करनी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: हम खुद जब से नहीं करेंगे तब से तब तक जो है ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी जागेंगे, ना चार घर जागेंगे, ना नगर जागेगा, ना देश जागेगा और ना ही विश्व जागेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो शुरुआत हम अपने से करें। और मैं जो है पहले से इस विषय का चिंतित हूँ और क्योंकि जागरूकता परिवार से मिली है हर विषय पर जानने की, देखने की, समझने की
0: जी।
1: तो हम लोग शुरुआत किए थे कि हम घर में मार्केट से कोई भी प्लास्टिक थैली नहीं खरीद के लाते हैं,
0: मतलब क्या
1: कोई सामान उसमें नहीं लाते।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: अगर कोई दिक्कत भी है तो पुनः घर लौटते हैं और फिर झोला लेकर ही सामान लाते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई देता है सब्जी भाजी देता है तो उसको मना करते हैं, नहीं भैया आप प्लास्टिक मत दो, हमारे पास झोला है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो परिवार में ये है कि हम लोग करते हैं। दूसरा, कभी भूले भटके किसी वस्तु में लाना अनिवार्य हो गया उसमें तो हम उसको डस्टबिन में नहीं डालते, हम उसको साफ करके या धो के रीयूज के लिए रखते हैं या कहीं और काम आ जाए, ताकि वो कूड़े में ना जाकर और अपनी वो ना फैलाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: ये प्रयास करते हैं, पानी बचाने का प्रयास करते हैं। पानी बचाने के लिए परिवार मिलकर प्रयास करता है
0: जी,
1: कि हम नल या शावर से कभी नहीं नहाते हैं।
0: क्या बात है,
1: भरकर नहाते हैं।
0: जी जी जी।
1: कूलर का जो है हम परिवार में एक सामूहिक हमारा हॉल है, हम उसमें सभी उस एक कूलर से आनंद लेते हैं।
0: वाह।
1: तो हम इससे दोहरे लाभ कमाते हैं, बिजली बचाते हैं और पानी भी बचा लेते हैं।
0: बिजली बचाते हैं, पानी बचाते हैं और साथ का आनंद उठाते हैं।
1: तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो अनमोल धरोहर है।
0: जी जी जी। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सार्थक और बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत खुशी हुई, बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, हार्दिक आभार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, नाम बताइएगा।
1: नमस्कार, गोविंद जलोदिया, खातेगांव, जिला देवास।
0: गोविंद जलोदिया जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है सर, गर्मी से अब ठंडी पड़ गई है
0: जी, तो कुछ बारिश की बूंदों ने राहत तो दी है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपके मन में किस प्रकार की चिंताएं हैं और कोई एक सार्थक पहल।
1: तो क्या है कि पर्यावरण से तो पूरा सस्ती चल रही है। पर्यावरण क्या है, जब तक झाड़ पेड़ पौधे पदे ये वो नहीं रहेंगे, प्रदूषण नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी, तो वातावरण शुद्धिकरण रहेगा ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सबसे जरूरी तो यह है कि आदमी ने क्या, अभी जैसे अभी 5 तारीख को बना रहे हैं तो एक संकल्प कर लेना चाहिए और वहाँ से चल के रोज एक कुछ न कुछ झाड़ पेड़ पे पानी देते ही रहो।
0: तो आप पौधों को परवरिश देने की बात कर रहे हैं?
1: पेड़ पौधे को पानी देते रहो, ये भी संकल्प कर लेना चाहिए। बनाना मतलब झाड़ उगाना तो अलग बात है,
0: बहुत अच्छी बात है। सिर्फ पौधारोपण से बात बनती है
1: तो पौधारोपण से उससे शुद्धिकरण रहता है। आगे और पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पे ये फल फूल वगैरह टाइप यही वो आप कर दो, इनको रोज आप पानी दो तो वातावरण में शुद्धिकरण हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो आपने ये कहा कि पौधे लगाना तो आवश्यक है ही, उनकी परवरिश एक बच्चे की तरह करना आवश्यक होता है। वो पौधा बड़ा हो जाए ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका क्या संकल्प रहेगा?
1: संकल्प ये है मेरा है, मैं तो डेली वैसे जल तो चढ़ाता हूँ, वैसे तुलसी का वो है जो पौधा और 2-3 मतलब जो उसके फूल भी है, तो जब सूरज ग्रहण कर सूरज भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं
0: जी।
1: अब और 5 तारीख से और संकल्प कर लिया कि हम डेली मतलब जो है पेड़ पौधे में पानी देंगे।
0: तो आप जहाँ भी देखेंगे सूखते पौधे पानी देंगे, ये एक अच्छा संकल्प है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रिय श्रोताओं, धरती केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी स्मृतियों का घर है। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, वे हमारी सांसों के प्रहरी हैं। नदियाँ केवल जलधाराएं नहीं हैं, वो जीवन की सतत बहती हुई कथा हैं। और पर्यावरण केवल एक किताबी विषय नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। आज जब पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने खड़ी है, तब आवश्यकता है केवल चिंता की नहीं, बल्कि संकल्प की। एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरी भरी धरती का उपहार दे सके। और आज इस कार्यक्रम में आप सबने अपने संकल्प हमसे साझा किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकल्प आपको हमेशा याद रहेंगे। एक दूसरे को भी आप ये बातें याद दिलाते रहेंगे और इन संकल्पों को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां बातों से बात बनेगी नहीं। बातें अब तक खूब हुई हैं, अब बारी है कुछ कर गुजरने की। तभी धरती पर जीवन की बात हो सकेगी, हमारे अस्तित्व की बात हो सकेगी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज की प्रस्तुति थी सुनीता सिंह की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। श्योपुर के कुरु नेशनल पार्क में दशकों बाद दुर्लभ जंगली

0: बिल्ली कैराकल की मौजूदगी कैमरे में ट्रैप हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि कुनो में समृद्ध हो रही जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का प्रमाण है ये। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। शिक्षण संवर्धन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 विद्यार्थियों और 11 शालाओं को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। प्रदेश में मॉनसून से पहले ही प्री मॉनसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज भी यही मौसम बना रहेगा और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामेगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को साधना जैन का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? तो लीजिए, हम लेकर आ गए हैं आप सभी की पसंद पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम। तो भारत और भारत से बाहर सुनने वाले सभी श्रोताओं को साधना जैन का नमस्कार। आपने अपनी पसंद हमें भेजी और हम आ चुके हैं आपके गाने लेकर। पहला गीत हमने लिया है काजल फिल्म से। आशा भोसले साहिर की आवाज है आशा भोसले की, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है रवि ने। इस गाने को पसंद किया है नागपुर से डॉ. विजय जैन, लता व किशोर मोहरिल, हेमंत देशपांडे, मोहन, रमेश बल्लाल और आपके सभी साथियों ने। तो आपकी पसंद पर यह गीत हम भेज रहे हैं काजल फिल्म का।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। अगला गीत सच्चा झूठा फिल्म से मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज है। गीत लिखा है हिंदी वर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को पसंद किया है अखिल भारतीय तीर संरक्षण महासभा मध्य प्रदेश के सभी साथियों ने, अनिल अरुणा आरबीआई, आदिश्वर प्रसाद, अल्पना जैन, संजय जैन, सीमा जैन, संध्या आजाद मोदी, प्रदीप जैन, राजेश ममता डालडा, संतोष किरण ट्रांसपोर्ट, वर्षा ज्योति स्वरूप जैन, सुषमा सुनील गंगवाल, जितेश आभा, ज्योतिषाचार्य और राकेश रौनक ने। तो आप सभी की पसंद पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश और मैं हूं आपके साथ साधना। अगला गीत सुजाता फिल्म से एसडी बर्मन की आवाज है। गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत है एसडी बर्मन का। और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने, अमेरिका के बोस्टन से डॉक्टर विजय प्रकाश जैन और आपके परिवारजन प्रियांक, पुनीता, अंकुर, आर्जव और अनिरुद्ध। साथ ही आप हमारे देश हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई, रिश्तेदारों और सभी मित्रों को भी सुनवाना चाहते हैं ये गीत। तो अमेरिका के साथ साथ भारत में भी डॉक्टर विजय प्रकाश जी और अपने साथियों के साथ सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अली जी, आपकी फरमाइश का अगला गीत ये रात फिर ना आएगी से महेंद्र कपूर की आवाज है। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है और ओपी नैयर ने संगीत दिया है। हमारे इन सभी श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने इसी गीत को सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सभी की पसंद पर

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश। बेताब फिल्म का गीत हम आपको सुना रहे हैं शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीत दिया है। इस गीत के फरमाइश करता इस गीत के बाद हम आपको

बेताब फिल्म के इस गीत को पसंद किया था भोपाल गौतम नगर से पंडित ममतेश शर्मा, दीपू शर्मा, अक्षरा अनुष्का और विनायक शर्मा ने। इसी गीत को पसंद किया था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक ने। आप सभी की पसंद पर हमने सुनवाया बेताब फिल्म का ये गाना। और लीजिए, आपकी फरमाइश का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। और इसी गीत को पसंद किया है बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जे एस नायक, शोभा नायक और जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला और समस्त डागला परिवार ने। आप सभी की पसंद पर यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लोफर फिल्म के इस गीत को जिसे आशा भोसले ने गाया था, इसके साथ ही आपकी फरमाइश यही संपन्न करने की आज्ञा दीजिए साधना जैन को। अगली बार नए साथियों के पत्र और नए गीतों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।

0: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
1: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
0: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको संगवा रहे हैं जंग लगी तलवार का भाग एक।
1: प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

0: स्वामी, क्या बात है बेटा, तू आज इतना उदास क्यों है?
1: उदास ना हूं तो क्या करूं काका, दलित मजदूरों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती।
0: शंभू काका, आपने आजादी का आंदोलन तो देखा है ना?
1: देखा है बेटा, कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुई थी हमें आजादी। हजारों लाखों देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया है इस आजादी को हासिल करने के लिए, मगर क्या हम सचमुच आजाद हो पाए हैं?
0: यही सवाल शंभू काका, ठीक यही सवाल मुझे हर पल सच छोड़ता रहता है। हार तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी नसीब ना हो, तन ढकने के लिए कपड़ा लत्ता तक ना हो, गोद में खेलने वाले बच्चों को दूध की एक बूंद भी ना मिले, पिचका पेट और उघा बदन लिए घूमने वालों के लिए भला इस आजादी का क्या महत्व का था?
1: दुख तो इस बात का है बेटा कि हमारे नेता भी हमारी दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करते, बस जुलूस सभाओं में गाल बजाते हैं और भूखी नंगी जनता की तालियां बटोरकर खुद की पीठ थपथपाते हैं।
0: अब इस साई नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट को ही ले लो काका, कहने को तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनी हुई है, मगर आज तक यूनियन ने मजदूरों के लिए किया ही क्या है?
1: यूनियन के सारे नेता धूर्त और मक्कार हैं यशवंत।
0: हाँ काका,
1: पहले तो मजदूरों को उकसाते हैं, उनके भले की बात कहते हैं, सदियों से पिस रहे मजदूरों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनसे हड़तालें करवाते हैं और मौका मिलते ही कंपनी के अफसरों से मिल जाते हैं। भूख की आग में जल रहे मजदूरों की दशा पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है बेटा।
0: लेकिन काका, ये मजदूर हड़ताल करते ही क्यों हैं?
1: हड़ताल तो यूनियन करती है, हड़ताल करना लोकतांत्रिक अधिकार जो है, मजदूरों को तो विवश होकर यूनियन का साथ देना पड़ता है, नहीं तो कंपनी के अधिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं।
0: हाँ?
1: पूरी मजदूरी पर अंगूठा लगवाकर उन्हें आधी मजदूरी दी जाती है।
0: क्या
1: अफसरों के घरों में बेगार भी करनी पड़ती है यहाँ के मजदूरों को। सबसे अधिक दयनीय दशा तो हम दलित मजदूरों की है, गंदगी तक साफ करवाते हैं लेकिन पहनने को जूता तक नहीं देते।
0: हे भगवान, काका क्या जमाना आ गया है, क्या हम लोगों को अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए? काका मैंने तो पढ़ा है कि मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है और दलितों के लिए भी अलग कानून है, तो फिर हम लोग कानून से सहायता क्यों नहीं मांगते?
1: बेटा तू पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है, लेकिन तेरे पास व्यावहारिक ज्ञान की

0: मैं कुछ समझा नहीं काका। कानून से न्याय मांगने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील को फीस देनी पड़ती है। अरे जब खाने को नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन चाचा, ये यूनियन हम मजदूरों से जो चंदा इकट्ठा करती है वो सब कहाँ जाता है? क्या उस धन का उपयोग हम मजदूरों के हित में नहीं होता?
1: अरे तू इस साइट पर नया आया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं जानता।
0: हाँ?
1: यूनियन का पैसा यूनियन के नेताओं की मौज मस्ती के लिए होता है, सारा पैसा उनकी शराबखोरी में खप जाता है।
0: ओ, मैं समझ गया काका, सब कुछ समझ गया।
1: सच?
0: जरा बता दो क्या समझा।
1: देखो काका, मैं मानता हूं कि कंपनी का मजदूर होने के कारण उसका अत्याचार सहना तो हम सबकी मजबूरी है। कंपनी के सामने सारे मजदूर भाई लाचार और विवश हैं।
0: लेकिन काका, यूनियन नेताओं के सामने भला कैसी विवशता? अरे यूनियन का पैसा मजदूरों के खून पसीने की कमाई है, मजदूरों का ब्लड बैंक है यूनियन का फंड।
1: बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान है बेटा, मगर उस पर अमल करना उतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है।
0: काका, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं यूनियन की तस्वीर बदल सकता हूँ, मजदूरों का भाग्य पलट सकता हूँ मैं।
1: लेकिन काका, क्या एक दलित मजदूर को यूनियन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा?
0: आज तक क्यों ऐसा नहीं हुआ,
1: लेकिन मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है।
0: अरे आप तो बहुत सालों से यहाँ हैं काका, कंपनी की नौकरी करते हुए आपको 20 बरस हो गए हैं। अब काका, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हाँ हाँ हाँ,
1: तू नया जरूर है बेटा, है भी नई पीढ़ी का, तेरा जोश देखकर उम्मीद बनी है कि अब हमारा उद्धार जरूर होगा।
0: मेरी बात ध्यान से सुन।
1: हाँ काका, तेरा पढ़ा लिखा होना तेरे साथ साथ हम सब के लिए वरदान बन सकता है। तुझे यूनियन में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा।
0: अब शंभू काका, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब आपकी योजना क्या है?
1: यूनियन का नेता राम बहादुर साल भर का चंदा डकार गया और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: अब जाकर पता चला तो उस पर अभियोग लगाया गया है। यूनियन की आम सभा में इस अभियोग का निर्णय सुनाया जाएगा।
0: तो फिर काका, फिर क्या?
1: अगर राम बहादुर को यूनियन से हटाया गया तो उसकी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को रखा जाएगा।
0: अरे तू पढ़ा लिखा तो है ही, समझदार भी है।
1: दलित मजदूरों की ओर से मैं तेरे नाम का प्रस्ताव रखूंगा।
0: सच काका, सच?
1: लेकिन काका, क्या यूनियन इस बात के लिए सहमत होगी?
0: भाई इस विषय में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि कोशिश करने पर सफलता हमारे कदम चूम सकती है।
1: लेकिन जसवंत,
0: हाँ काका,
1: यूनियन का प्रतिनिधि बनकर अगर तू भी दूसरे नेताओं जैसा बन गया तो हमारा क्या होगा?
0: ऐसा कभी नहीं होगा शंभू काका, ऐसा कभी नहीं होगा।
1: आज हम अपने हालात के सामने विवश हैं, लेकिन काका कल हालात हमारे सामने विवश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे।
0: ठीक है बेटा।

0: और उसमें क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। हाय हाय हाय हाय। और फिर पानी में नहाती हुई परी, इसकी एक फोटो खींचता हूँ।
1: हाय भैया, आसमान पर बादल भी नहीं है जो बिजली चमकती, फिर ये बिजली जैसी क्या चमकी? लगता है कोई भूत प्रेत है, यहाँ से चलना चाहिए, जाने क्या अनहोनी हो जाए हम। आप कौन हो बाबू? पराई नारी को नहाते हुए

0: देखते हो, आपको लाज नहीं आती?
1: अरे ना ना ना ना ना ना ना, अभी पानी से बाहर ना निकलना, पानी में खड़ी हुई को किसी परी से कम थोड़ी लग रही हो।

0: अरे मैं चौधरी हूँ, यहाँ के मैनेजर का छोटा भाई, शहर से घूम आया।
1: मैनेजर के छोटे भाई हैं आप?
0: हाँ। क्यों, मेरी बात का विश्वास नहीं?
1: लेकिन बाबू, आप मेरी तस्वीरें क्यों देना चाहते हो?
0: वो क्या है कि मैं सुंदरता की पूजा जो करता हूँ, जहाँ भी सुंदरता देखी तुरंत इस कैमरे में कैद कर लेता हूँ।
1: बाबू, आप मेरी तस्वीरें मुझे दिखाएंगे ना?
0: हाँ, जरूर दिखाऊंगा।
1: तो ठीक है, फिर खींचो मेरी फोटो।
0: अच्छा, थोड़ा मेरी तरफ देखो, थोड़ा दूसरी तरफ घूमो, जरा मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा, अब थोड़ा बैठ कर दोनों हाथ उधर करो, एक हाथ थोड़ा और ऊपर। कितनी तस्वीरें बहुत है, जरा नदी से बाहर।

0: लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू ऐसी बात ही करना चाहती थी।
1: अच्छा, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। चलो तुम मैं घुमा कर खड़े हो जाओ।
0: अच्छा समझ गया, लो लो मैंने ये मुंह घुमा दिया।
1: देखो जब तक लेना चाहूँ इसको मीना करना।
0: लो
1: आपने आपने मुझे देवी जी कहा?
0: आपने नाम तो बताया नहीं, तो देवी जी ही कहना पड़ेगा।
1: मेरा नाम नारायणी है बाबू जी। बाबू जी अब आप मेरे लिए घूम सकते हैं, मैं कपड़े बदल चुकी हूँ।
0: लो मैं घूम गया। भाई नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है।

0: sendirian?
1: Hah? Buci ada di?
0: Tidak. Biarlah lagi ni. Katakanlah darah ini. Tidak biarlah lagi ni.
1: Siapa bucinya?
0: Biarlah katakanlah. तेरा ब्याह हुआ कि नहीं?
1: हो गया।
0: क्या?
1: लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है।
0: अच्छा, नारायण, ये तो पता कि गौना कराकर तुझे ले जाने वाला तेरा मर्द क्या करता है?
1: वो भी सुनिए मैं अकेला है बाबूजी। प्लीज चोरी करके अपना पेट भरता है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा एक बात और बता, क्या वो किसी पसंद है?

0: बेटे यशवंत, बहुत बुरी खबर है।
1: क्या हुआ शंभू काका, आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
0: सुखदेव, अरे तुम तो उसे जानते हैं ना, जिसे 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था।
1: हाँ काका,
0: उसने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली।
1: क्या?
0: चौंकने की जरूरत नहीं है यशवंत, ये तो हम लोगों का भाग्य बन चुका है।
1: अरे कैसा भाग्य काका,
0: आखिर यहाँ के मजदूरों ने आत्महत्या की प्रवृत्ति

0: बेटा भूख भूख की वो कारण है जो जीते जाते इंसानों को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर देती है।
1: काका तो क्या सुखदेव और उसके परिवार की मौत का कारण भी भूख है?
0: हाँ यशवंत, सुखदेव तो मरकर तमाम झंझटों से मुक्ति पा गया। देखना तो यह है कि अगला नंबर किसका है।
1: ऐसा ना कहो शंभू काका, ऐसा ना कहो। काका इस साइट का कोई मजदूर भूख से नहीं मरेगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें शीघ्र ही कोई पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा।
0: बेटा जब तक मजदूरों की चटनी होती रहेगी तब तक इसे किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता।
1: काका एक बार, बस एक बार मैं यूनियन का प्रतिनिधि बन जाऊं, उसके बाद कंपनी के अफसरों से छटनी रोकने पर मैं खुद बात करूंगा। और काका सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव भी रखूंगा।
0: अरे हाँ, यूनियन के नाम पर अच्छा याद दिला है। अगले महीने की 10 तारीख को यूनियन की आम सभा बुलाई है। राम बहादुर की यूनियन की वर्दी उतरना निश्चित है। यूनियन में तेरा नाम शामिल करवाने का अगर ये मौका हम चूक गए तो फिर ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी नहीं आएगा।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं शंभू काका, हमें इस मौके को हर हाल में भुनाना है। काका जब तक यूनियन में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक उनकी दशा सुधारी नहीं जा सकती।
0: मैं तेरी बात से सहमत हूँ जसवंत।
1: काका आप एक काम कीजिए, आप सभी दलित मजदूरों को आम सभा में उपस्थित रहने के लिए कह दीजिए।
0: ठीक है।
1: यूनियन में दलित मजदूरों को आज तक जिस अधिकार से वंचित रखा गया है इस बार हम अपना वो अधिकार लेकर आएंगे।
0: दलित मजदूर तो एक है जसवंत, इसके अलावा मैं दूसरे मजदूरों का मन भी टटोलता हूँ, शायद उनका समर्थन भी हमें मिल जाए।
1: और इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगा काका।
0: और हाँ, नीचे भी हमारे साथ है। अब कामयाबी अधिक समय तक हमसे दूर नहीं जा सकती।
1: काका तब तो समझो कि सभी दिहाड़ी मजदूरों को साल भर काम की गारंटी और काम का पूरा भुगतान तुरंत करने का नियम भी जल्दी बन जाएगा। और काका तब कोई भूख से नहीं मरेगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे सभी मजदूर भाई खुशहाल होंगे। काका खुशहाल
0: तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा।

मजूरी कर रही है। मजूरी करने को कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप तो गरीबी और भूख है। अगर गरीबी और भूख न रहे तो धरती पर पाप का बोझ ही क्यों पड़े। ठीक है, अब मैं इस बीमार गरीब ब्राह्मण की देख रेख का काम कर रहा हूं। अगर इसके पास मुझे देने के लिए है भी क्या, बेचारा आप ही कई कई दिनों तक भूखा रहता है। मैं उसे यूं भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। इंसानियत के नाते ही सही है, लेकिन उसकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मगर

0: ही मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा है। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे बेटा। रामन महाराज, आपके साथ मेरे भी खाली सभी कट जाता है। महाराज, एक बात समझ में नहीं आता, कौन सी बात बेटा? महाराज, आप रहने वाले तो इलाहाबाद के हैं, आपका भरा पूरा परिवार है, फिर आप यहाँ आकर अकेले क्यों रह रहे हैं?
1: यह एक दुख भरी कहानी है शिवो बेटा। जब से मुझे ये निगोड़ी टीबी थी, छूट की बीमारी लगी है बेटा, तब से मेरे अपने सगों ने मुझे टुकरा दिया है। सगों के सामने तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि कहीं दूर एकांत में अपने अंतिम दिन व्यतीत।
0: आपको तो बहुत तेज खांसी हो रही है, मैं आपको पानी देता हूँ, पानी मार दीजिए। आपके बलगम में तो खून भी है।
1: महाराज,
0: महाराज।

0: 내가 나 그게 못살다 내가
1: 아 그냥 너무 아프게 됩니다
0: 내가

0: भयानक बीमारी से तू नहीं रहता था।
1: ब्राह्मण देवता, हम गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी तो भूख है।
0: यह

0: बीमार इंसान था फिर भी कुछ दिन दे देता है बेटा, लेकिन लेकिन भूखा इंसान नहीं ना जाना। भगवान किसी को भूख का रोग ना दे बेटा।
1: महाराज ठीक कहते हैं आप,
0: भूख का रोग ना दे।
2: महाराज आपकी खांसी को रोकने के नाम है।
0: अब आप आराम कीजिए,
2: नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी।
0: चलिए महाराज। हाँ बेटा, मेरी सांस तब रुक जाए बेटा, कोई भरोसा नहीं। ना बेटा, उससे एक विनती करना चाहता हूँ।
1: महाराज आप ब्राह्मण हैं,
0: ब्राह्मणों का स्थान देवताओं के बारे

0: माता, कहीं किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा। इस बात का भी नहीं कि तुम्हें तेरे हाथ का पानी पीता था। हाँ बेटा,
1: ब्राह्मण महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपको यह विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।
0: बेटा बेटा, ये नहीं पूछा था कि ऐसा करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं।
1: इसमें पूछने की क्या बात है महाराज?
0: तो बहुत समझदार है सिद्धू।
1: कभी आप किसी भी तरह की चिंता न करें। अपमान का घूम फिरना तो हम दलितों के लिए रोजमर्रा की बात है। महाराज, मैं आपके सम्मान की रक्षा अपने

0: don't know.
1: Oh, my God. Please, me.

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा सागर नागपुर हैदराबाद के बीच नई स्थायी ट्रेन सेवा को मंजूरी दे दी है। इस सीधी ट्रेन से सागर और बुंदेलखंड के लोगों को इलाज, व्यापार और शिक्षा के लिए दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। सीबीएसई ने 12वीं के अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है।

0: छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून जमकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई और आज भी यही मौसम बना रहेगा। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काकामिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। प्रकृति का पोषण करें ताकि भविष्य समृद्ध हो, वन्य जीवों की रक्षा करें, जैव विविधता को संरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हमारा अधिकार। मैनो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा करे और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता नहीं करता। बहनों आज विश्व तेजी से औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सतत विकास की अवधारणा मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग प्रदान करता है। मैनो किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हों। लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया। मैनो इस असमानता के कारण समाज की आधी आबादी अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई। सतत विकास लक्ष्य 5 इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मैनो जब महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इससे आर्थिक विकास तेज होता है, गरीबी कम होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है। यही कारण है कि लैंगिक समानता को सतत विकास की आधारशिला माना गया है। मैनो महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध भविष्य के निर्माण से है। पढ़ी लिखी महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करती है। इससे एक जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण होता है जो भविष्य में देश और समाज के विकास में योगदान देती है। मैंने महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनती हैं। इससे परिवार की आय बढ़ती है और समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैंने आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं और समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकती हैं। बहनों हमारा आने वाला कल केवल आर्थिक विकास पर ही निर्भर नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी आधारित है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य की पीढ़ियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बहनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जल संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में अपनी पूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बहनों, जब महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनते हैं। बहनों, सतत विकास लक्ष्य 5 इन मूल्यों को और मजबूत करता है। जब महिलाओं को शिक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक परंपराओं, कला, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बहनों, महिलाएं परिवार की प्रथम शिक्षिका होती हैं। वे बच्चों को संस्कृति, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान देती हैं। इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती हैं, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान और अधिक मजबूत होती है। आइए बहनों, सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

0: मैडम, भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है महत्वपूर्ण लखपति दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और अपने परिवार की आर्थिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँचाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य लाखों ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बहनों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्यवसाय। मैंने इसके अतिरिक्त महिलाओं को ऋण सुविधाएं, बाजार से जुड़ाव और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सामूहिक रूप से कार्य करती हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। बहनों, लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अनेक महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस योजना ने महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। हालांकि बहनों, यह योजना अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच व तकनीकी ज्ञान का अभाव कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आवश्यक है। बहनों, यह कहा जा सकता है कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बहनों, इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो लाखों महिलाएं अपने जीवन में समृद्ध और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख सकती हैं। बहनों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहनों, आप सभी ने अपनी दादी, नानी, मम्मी को जरूर सुनते हुए देखा होगा रेडियो, जिसको सुनने के बाद उन्हें सुकून महसूस होता था। तो आइए बहनों, हम बातचीत करते हैं अपनी दादी की नातिन श्रुति शर्मा से, दादी की याद में सुखद रेडियो के अनुभव।
1: नमस्ते, मेरा नाम श्रुति शर्मा है। आकाशवाणी का जब भी नाम सुनती हूँ और अपनी दादी से पूछती हूँ कि उनके क्या अनुभव रहे हैं आकाशवाणी और रेडियो के साथ खासतौर पर, तो बताती हैं कि रेडियो मात्र उनके लिए मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो उनके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। पुराने समय में पूरे घर में एक ही रेडियो हुआ था और वो उसी को पूरा परिवार बैठकर उसके विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता था। वो बताती हैं कि पुराने समय में विविध भारती के बहुत से ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें कि फिल्मी गीत आते थे और वो कहती हैं कि वो फिल्मी गीतों का इंतजार इतनी उन कार्यक्रमों का इंतजार बहुत बेसब्री से किया करती थी जिससे वो नए फिल्मी गीत उस समय के सुन पाएं। और वो बताती हैं कि

0: केवल मनोरंजन ही नहीं, उसमें समाचार, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी जानकारियां भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती थी। आकाशवाणी और रेडियो जो है उनके लिए ऐसा एक अनमोल याद है जिसका नाम लेते ही उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई पड़ती है, जिससे उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो कहती हैं रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे रेडियो, और आज के समय में जो इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन के और भी जो साधन चल रहे हैं तो उसमें फ़र्क ये बताती हैं कि रेडियो हमारे लिए ऐसा है जैसे मटके का पानी, और बाकी जो अभी चल रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल, ये साधन ऐसे हैं जैसे फ्रिज। तो मटके का पानी जो होता है उसे हम पिए तो बीमार नहीं पड़ते, वो ठंडक भी प्रदान करता है, मगर फ्रिज हमें ठंडक तो देता है, पानी भी ठंडा रखता है लंबे समय तक, पर उसमें ये भी रहता है कि वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा गला बैठ सकता है और पर्यावरण को भी वो नुकसान पहुंचाता है। तो हाँ, मेरी दादी सभी गाने रेडियो पर ही सुना करती थी। जो भी विविध भारती के पहले शाम को प्रोग्राम आया करते थे वो उनका, कहती हैं कि वो उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती थी, और जब कोई और रेडियो लिया रहे तो वो उन सोचती थी कि ये कब हटे और मैं बैठूं रेडियो के सामने और अपना प्रोग्राम। बच्चे बूढ़े जवान, तो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे बताती हैं कि वो समाचार और ये स्वास्थ्य शिक्षा की सभी जानकारियां लेते थे, और फिर जो अभी जवान लोग रहे थे जैसे वो खेल और बाकी जो विभिन्न समाचार उनको सुना करते थे, और जो फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे वो फिल्मी गीत और जो भी फिल्म अभिनेताओं वगैरह के जो साक्षात्कार इंटरव्यू आया करते थे उनको सुना करते थे, जिससे वो उस दुनिया से जुड़ पाए।
1: आपकी दादी अपने आप को कैसे अनुभव किया करती थी रेडियो के साथ?
0: मेरी दादी जो हैं वो सभी प्रोग्राम, सभी तरीके के प्रोग्राम सुना करती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम आया करता था तो वो बच्चा बन जाती थी, युवाओं में का प्रोग्राम आया करता था तो उनमें उत्साह और उमंग भर जाता था, और जब भी फिल्मी गीत आते थे तो उसी मतलब उस फिल्मों के प्रति इतनी उत्सुक हो जाती थी कि जैसे वो उसी सेट पर हो। तो सभी प्रोग्रामों को बड़े ही उत्साह के साथ सुना करती थी, चाहे प्रोग्राम कोई भी आए, रेडियो उनके लिए ऐसा साधन था।
1: दादी अब आपकी बोल नहीं पा रही हैं, अच्छे से बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा अनुभव करा दिया है उन्होंने रेडियो के बारे में कि आपको भी इच्छा होती होगी कि हम भी दादी के ज़माने में हुआ करते।
0: दादी मुझे सीख दिया करती हैं कि जो इंटरनेट और जो आजकल के साधन है इनको छोड़कर रेडियो भी सुना जाए। तो मैं भी कभी कभी रेडियो सुन लेती हूँ, और जो उसमें गीत आते हैं वो भी मैं कभी कभी गुनगुना लेती हूँ। रेडियो ने बहुत प्रभाव डाला है, जो मतलब जेन जी जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है उसमें, वो भी कई बार सोचती है कि वो भी रेडियो सुने, मगर जो मिलेनियल्स और उससे पहले की जनरेशन है उनके जीवन का रेडियो एक रेडियो और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा पूरी युवावस्था और अपना बचपन बिताया है।
1: श्रुति जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं गीत

हैं बाजार में पुदीना खूब आ रहा है और पुदीना तो एक सुगंधित औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भोजन, पेय पदार्थों और आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता है। इसके लाभ भी बहुत हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है, मुख की दुर्गंध दूर करता है, सर्दी जुकाम में राहत पहुंचाता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, त्वचा के लिए भी लाभकारी है पुदीना। मैंने पुदीना कम कैलोरी वाला होता है, यह भोजन का स्वाद बढ़ाने का एक अच्छा प्राकृतिक तरीका है। इसीलिए बहनों आज हम लेकर आए हैं पुदीने की चटनी बनाने की आसान विधि, जिसके लिए सामग्री इस प्रकार है। एक कप ताजे पुदीने के पत्ते, आधा कप हरा धनिया, दो से तीन हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक से दो लहसुन की कलियां, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा, स्वादानुसार नमक, दो से तीन बड़े चम्मच पानी। मैंने बनाने की विधि इस प्रकार है। पुदीना

लें और हरी धनिये को धो लें। फिर मिक्सर में पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन डालें। फिर इसमें नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाएं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, फिर एक कटोरी में निकाल लें। लीजिए, तैयार हो गई आपकी पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसका आनंद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी के साथ ले सकते हैं और रोज के खाने का भी स्वाद बढ़ा सकते हैं। आइए बहनों, अब सुन लेते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। अरे, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉ अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजू उपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर लेते हैं कि टाटा में लोग एक यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आए, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है जो हमें वो समय पर, लेकिन जिनको आज कैंसर है उनका क्या करें, वे इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल, तो बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी। सुविधाएं तत्काल मेडिकल कॉलेज जीविका में हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये स्क्रीनिंग का, जांच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए, हम वो चीजें जो आज जरूरी कर रहे हैं। डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
0: प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में सभी जिलों में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में पालकगण आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई

0: जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभावहीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगरपालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत

0: को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत

0: भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21

0: पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां आपको हम सुनाते हैं आपके पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ है मोहम्मद अजीज और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है, जो कि है गांधी चौक।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म खुदा गवाह से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कब्रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबापट्टी पलिया से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनिया पारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा शरद और उनका पूरा परिवार। और इन्होंने फरमाइश की है जिस गीत की, वो है सलमा आगा की आवाज में फिल्म निकाह से। तो लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

रवि का संगीत हसन कमाल के बोल, सलमा आगा की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है यह अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत, भरत व्यास के लिखे बोल, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल 462002। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा डॉ सीआर मेहता से आज शाम 6:00 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा शाम 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। 9:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा ऋषिकेश गंगुरडे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में न्यूज हेडलाइंस और उसके उपरांत युववाणी कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज दोपहर भोपाल विधानसभा में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रसिद्ध है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज को नई राह दिखाई। उनका नाम है बिरसा मुंडा। वो झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में 15 नवंबर 1875 को एक मुंडा परिवार में जन्मे थे। बिरसा बचपन से ही बहुत समझदार और साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हम एक होकर लड़ें तो अन्याय हार जाता है। आज झारखंड राज्य बनाने में भी बिरसा की प्रेरणा काम आई। उन्हें धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहो। उनकी याद में हम भी आज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षा लें, एकजुट और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें। और दोस्तों, अब श्रेया घोषाल की मीठी और सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में आपको सुनवाते हैं जोश से भरा हुआ ये गीत।

0: दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनटीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ। ये वो समुदाय है जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है, जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवर जनजाति ग्राम उत्कर्ष

0: अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVKG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। वन धन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला। पीएम जनमन ने 48 लाख से ज्यादा PVKG लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियाँ हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुँच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है, लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, जिनके फॉर्म आप 30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है SSC CGL 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, रिपुटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक NDMA पोर्टल पर किया जा सकता है। अगली है NALCO नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। इसमें 268 पद ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फोरमैन आदि के हैं। 10वीं ITI डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा UPSC में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण

एसबीआई अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एलपी जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें, क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली एनडीएमई भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है, लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जल्दी आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही, और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का, तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireva@gmail.com। तो स्वस्थ तन स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपने रेडियो दोस्त।

0: अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: बड़ी उदास कैसे बुझाए अपनी प्यास, बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंडपंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी,

0: रेडियो में 188.3 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाश।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है शान की आवाज में। गीत लिखा है अमित हॉटचंदानी ने, संगीतबद्ध किया है चंदर विशाल और संजय ने। फिल्म है मी मामू।

0: हूं फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान की आवाज में। गीत लिखा था अमित हरचंदानी ने और संगीतबद्ध किया था चंदर विशाल संजय ने। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान को, फिल्म है कॉलेज कैंपस, गीत साहिल सुल्तानपुरी का है और संगीतबद्ध किया है अतुल ने।

सुनी थी चौहान की आवाज में। अभी आपने सुना कॉलेज कैंपस फिल्म का गीत। गीत लिखा था साहिल सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था अतुल्य। आइए अब सुनते हैं सुनिधि चौहान और अनुपम अमृत को, फिल्म है कुछ लव जैसा। गीत इरशाद कामिल ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

कुछ लव जैसा। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और अनुपम अमोद की आवाज में। गीत इरशाद कामिल का था और संगीत प्रीतम का। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है फिल्म रेडी से तुलसी कुमार और केके की आवाज में। गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना रेडी फिल्म का गीत तुलसी कुमार और के की आवाज में। गीत नीलेश मिश्रा का था और संगीत प्रीतम का। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले इस सभा के शीर्ष

कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद 6 बजे सुगम संगीत में सुनिए चंद्रू आत्मा को। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में सुनिएगा ब्रजलता मिश्रा से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। आज की सीख का विषय होगा जो जानो जाड़े को भेद तो मुंदो कमरा को छेद। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। 8:35 पर होगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये तो थी हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। कल सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत सुनिए रविशंकर पाठक से पुनः प्रसारित वार्ता बुंदेली कहावतों में लोक जीवन। 7:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 पर सुनिएगा रूपक श्रृंखला बुंदेलखंड की नदियां, माफ कीजिएगा 8:30 पर सुनिएगा धारावाहिक गीत गीता का भाग 12, विषय है भक्ति योग। 8:42 पर होगा फिल्म संगीत। 9 बजे लोकरंग में सुनिएगा किशोरीलाल अहिरवार से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर होगा पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे 11 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति के अंतर्गत 1 बजे महिलाओं का कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। इसके अलावा आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही 2 बजे फिल्म संगीत का अनुप्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर बच्चों के कार्यक्रम बाल सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें सुनिएगा उमा देवी पाराशर से काव्य पाठ। हमारी सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा जो कि आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। 5:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 6 बजे भजन संध्या के अंतर्गत आप सुनिएगा लता मंगेशकर से भजन। 6:30 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें कल आप सुनेंगे धन सिंह आदिवासी से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम सभा में सुने रेडियो धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 10, बंधु सिंह लोधी से काव्य पाठ। आज की सीख का विषय होगा जो सुख चाहो देह को चीजे तज दो चार, चोरी चुगली जमीन और पराई नार। 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर स्पॉटलाइट। 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोता, ये तो थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:58 हो रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज हमारे कलाकार हैं चंद्रू आत्मा। आरंभ करते हैं इनके गाए इस भजन से जिसे लिखा है नरेंद्र रोशन ने।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: आइए अब सुनते हैं एक बार फिर नरेंद्र रोशन की लिखी शब्द रचना चंद्रू आत्मा की आवाज में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम में आगे सुनिए अख्तर इंदौरी का लिखा भजन चंद्रु आत्मा की आवाज में।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कबीर का लिखा भजन चंद्रू आत्मा से।

इसी भजन के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। ये प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज हमारी कलाकार हैं ब्रजलता मिश्रा, इनके साथ ढोलक पर रहेंगे महेश कुमार, बैंजो पर राजा राम विश्वकर्मा और बांसुरी पर मनोज कुमार। आरंभ करते हैं इनके गाए इस लोक भजन से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम में आगे सुनिए लावनी ब्रजलता मिश्रा से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा इसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना के नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए सुनिए सोहर ब्रजलता मिश्रा से।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: एक और सुहर सुनिए ब्रजलता मिश्रा से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम में आगे सुनिए अचरी ब्रजलता मिश्रा से।

इसी ज्ञान के साथ बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। इसमें आज हमारी कलाकार थी ब्रजलता मिश्रा, ढोलक पर इनके साथ थे महेश कुमार, बेंजो पर राजाराम विश्वकर्मा और बांसुरी पर मनोज कुमार।

हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गुमशुदा सूचना। ये सूचना राधा देवी के बारे में है। इनके पिता का नाम है जन्मेजय सिंह। इनका मोबाइल नंबर है 6386992833। इनकी माता का नाम है अंगूरी देवी और उम्र है 16 वर्ष के लगभग। ये ग्राम महेबा पोस्ट महेबा थाना कालपी जिला जालौन की रहने वाली है। इनका हुलिया है रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 2 इंच, थाना कालपी है। इनकी पोशाक जो ये पहने हुए थी जब इनका अपहरण हुआ है वो काला लोअर और पेंसिल रंग की टी शर्ट पहने हुए थी। इनके गायब होने के संबंध में जो सूचना है वो प्रार्थी कमलेश सिंह पुत्र शिव गणेश सिंह ने लिखवाई है। ग्राम महेवा थाना कालपी जनपद जालौन के ये निवासी हैं और दिनांक 12/5/2026 को इन्होंने कहा कि इनके भाई की पुत्री राधा देवी की पुत्री जन्मेजय सिंह निवासी व ग्राम महेवा थाना कालपी जनपद जालौन ने जिनका रजिस्टर के अनुसार जिनकी जन्मतिथि 6/5/2010 है, इनके गांव का लड़का राहुल सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी महेवा थाना कालपी जनपद जालौन का निवासी जिसका मोबाइल नंबर है 6391163902, इनकी भतीजी को बहला फुसला कर दिनांक 12/5/2026 को सुबह 3 बजे भगाकर ले गया है। इसकी भतीजी की जो उम्र है वो 16 वर्ष है। इन्होंने जो आवेदन दिया है इस पर उन्होंने कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही करें और जो नंबर इन्होंने दिया है राधा देवी के पिता का वो है 6386992833। इस बारे में उपनिरीक्षक कालपी का मोबाइल नंबर है जो कि उपेंद्र शुक्ला है 7355435048। प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी का मोबाइल नंबर है 9454403596। क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह का मोबाइल नंबर है 9454401429। जिस किसी व्यक्ति को राधा देवी की सूचना मिले इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। अगली जो सूचना है गुमशुदा की वो है महक पुत्री जावेद अली की। इनका पता है सूर्य नगर उरई तहसील उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन। इनका रंग गोरा, लंबा चेहरा है, बाल लंबे हैं, उम्र इनकी भी 16 वर्ष है और लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच है। ये दिनांक 9/5/2026 से गुम है और जो इनकी तहरीर है वो इस प्रकार है कि प्रार्थी जावेद अली पुत्र श्री मिस्टर निवासी मोहल्ला सूर्यनगर उरई जिला जालौन ने लिखवाई है कि प्रार्थी की लड़की महक उम्र 16 वर्ष जो राजकीय बालिका विद्यालय राजेंद्र नगर उरई में कक्षा 11 की छात्रा है जो दिनांक 9/5/2026 को रोज की तरह स्कूल गई थी लेकिन स्कूल से लौटकर नहीं आई। पता करने पर जानकारी हुई कि स्कूल आई थी, नाते रिश्तेदारों से संपर्क किया, किसी से मालूम नहीं पड़ा। अतः इन्होंने गुमशुदगी का आवेदन दिया हुआ है। अगर किसी को महक के बारे में पता चलता है तो चौकी प्रभारी वल्लभ नगर जिनका मोबाइल नंबर है 7839002396, क्षेत्राधिकारी शहर 9454401427, थाना प्रभारी कोतवाली उरई जिनका मोबाइल नंबर है 9454401427।

0: 3599। इनके संपर्क सूत्र भी हैं जिनके मोबाइल नंबर है 9777073490 और 9369092359। इनको भी आप सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप निकटस्थ थाने में भी इसकी सूचना दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आकाशवाणी से विज्ञापन आपने सुना था इसके संदर्भ में गुमशुदा सूचना की, और ये दो लड़कियों में से जो भी आपको मिलती है उनकी सूचना आप दें, आगे की कार्यवाही थाना कर लेगा। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIRF पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। 7:10 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: भारत आगे बढ़ा है, एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बंदे अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तम्बाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
2: हम एक अभियान ही चला कैंसर रोग से पहले कैंसर रोकने का, और अभियान में गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू, जानबूझ के बिना उसके सामान क्यों इकट्ठे कर रहे? कहीं आपके कम उम्र के बच्चे लीवर खराब हो क्या? तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार लाएंगे तुम्हारे लिए क्या करेगा परिवार में हमारे भाषाओं को समाज को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में चलाए नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गांव में शराब, दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल

0: अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑन इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली यह अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया, प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सचिव नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला संबंधी अपराधों की विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कोलंबो जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेशम पालन और वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां तैयार कर रहे हैं। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जिले में जल निगम द्वारा संचालित जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ऊंचा देखी आवास, काल परसों भूमि लेटना, ऊपर जामे घास। पंचो, कबीर के ई दोहा के संगे शुरुआत कर रहे हैं आज के कार्यक्रम ग्राम सभा की। स्वीकार करो अपने कसूरी भैया की, राम राम। जो दोहा कार्यक्रम की शुरुआत में हमने अपन का सुनाओ, उको सीधो सीधो अर्थ जो है कि अपन का कहूं भी अपने ऊंचे मकान को, अपने ऐश्वर्य को, अपने बड़प्पन को घमंड न करो चाहिए। एक दिन सबका काल के गाल में समा जाने हैं और अंत में जहां अपन लेटे उस स्थान पे भी घास जम जाने हैं, अपनी जय स्थिति है। तो ई बात को अपन का मनन करने हैं, चिंतन करने हैं और अभी लेने हैं एक छोटो सो विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

पंचों विराम के बाद कार्यक्रम ग्राम सभा में अपन सबको फिर स्वागत है। आज हम बात कर भी अपने उन किसान भैयन से जिनने अपने अपने खेतन में नाडेप तरीका से खाद निर्माण की विधि अपना रखी है। बात ई बात की कर भी कि आखिर ई नाडेप खाद से फायदा अपन का क्या होते। सबसे बड़ी बात तो जा है कि नाडेप विधि से खाद तैयार करवे में गोबर की मात्रा बहुत कम और खेत के आसपास फैले हुए कचरा की मात्रा ज्यादा लगत है। यही से नाडेप खाद में जो आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा होत है वह सामान्य गोबर की खाद से कहूँ ज्यादा होत है। इनमें मुख्य रूप से नत्रजन की मात्रा 0.5 से 1.5%, फास्फोरस स्फुर की मात्रा 0.5% से 0.9%, पोटास की मात्रा 1.2% से 1.4% होत है और इसके अलावा अन्य कई सूक्ष्म पोषक तत्व नाडेप खाद में अपन का मिल जाते हैं। ई के संगे संगे नाडेप खाद मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार करत है। ई खाद का अपनी मिट्टी में डाले से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़त है, मिट्टी की संरचना बदलत है और भौतिक अवस्था में सुधार होत है। खेत की मिट्टी अपने आप भुरभुरी होने लगत है। नाडेप खाद से धरती के अंदर जैसे केचुआ भय ई प्रकार के सूक्ष्म जीवन का बढ़ावा मिलत है और निकलाने जा खाद बहुत अच्छी होत है।

0: सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि नाडेप खाद के निर्माण में लागत बहुत कम आउत है और अपनी बचत बहुत ज्यादा होत है। काम एक लेकिन लाभ इसे अपने अनेक जुड़े भय हैं। तो अपने किसान पंच जोन गोबर की खाद के लाने या रासायनिक खाद के लाने लंबी लंबी लाइनन में खड़े रहते हैं, वे समय रहते पे अपनी खेत में नाडेप विधि से खाद तैयार करें और ऊ खाद को प्रयोग अपनी फसलन में करें। फसलें भी अच्छी हुए और उमे उत्पादन में भी वृद्धि हुई, निश्चित एक साल में देखन लगे हैं। और अबे लेने हैं एक छोटो सो विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: पंचो, कार्यक्रम के ई भाग में अपन सबको स्वागत करत भाई। हम अपन का बता दें कि हम श्रोताओं के फोन कॉल्स पे आधारित बुंदेली लोक गीतन के फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन से अपन सबका जोड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति की। चलो ये कार्यक्रम का सुनो और कार्यक्रम को आनंद लो।

0: लोक रंजन
1: क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा जा चौपाई संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के किष्कंधा कांड में लिखी है। साथियों, चौपाई के पहले भाग में इस शरीर में पाए जाए वाले पांच तत्वों की व्याख्या करी गई है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई के दूसरे भाग में इस शरीर की मूल से अपन का परिचित कराओ है। इस शरीर की देखभाल में अपन अपनो जीवन खपा रही थे, लेकिन इस शरीर निर्माण में प्रयुक्त तत्वों के बारे में अपन हमेशा अज्ञान बने रहे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु जे पांचों तत्व अपने प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, अपने जीवन के आवरण हैं, अपने जीवन से जुड़े पर्यावरण के एक आधार स्तंभ हैं। कल यानी 5 जून का अपन ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाओ। अपन सबका विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक और आत्मीय शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार और ग्राम सभा परिवार की तरफ से। जीवन शैली अपनी चाहे जैसी हो, लेकिन अपनो जो दायित्व है कि अपन अपनी आगे आवे वाली पीढ़ी के लाने एक अच्छा पर्यावरण दिए, एक उचित सामाजिक वातावरण प्रस्तुत करिए और जीवन का संरक्षित रखवे के लाने पर्यावरण संरक्षण के तरफी भी ध्यान रखिए। साथियों, पूरे पर्यावरण को सार पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन पांच तत्वों में निहित है। अगर जे संरक्षित है और जे पांचों तत्व उत्तम रूप से क्रियाशील हैं, तो जो मान के चलो कि अपनो जीवन भी सुरक्षित है, अपनी आगे आवे वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हैं, अपन सब स्वस्थ रहो, आनंद में रहो, हमारी यही कामना है। यही कामना करत भाई रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में शुरू कर रहे हैं आज को जो फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकरंजन। इस कार्यक्रम में अपन के संगे हम है अपन सबके सखा मैथिली शरण तिवारी। स्वीकार करो हमारी, राम राम
2: जी। नमस्कार सर जी,
1: कार्यक्रम में स्वागत है। जय सियाराम की
2: जी। मैं ग्रामा पोस्ट गोना कुमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो में दीपक कुमार नामदेव बोल रहे सर जी।
1: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है नामदेव जी।
2: जी
1: और बताओ क्या हाल चाल है।
2: बस सर जी, धूप काफी पड़ रही है, साथ में बादल भी छाए हुए हैं और अपना सिलाई का काम है तो निरंतर सिलाई का काम ही कर रहे थे सर।
1: अच्छा, तो आज के कार्यक्रम में किको गाओ कौन से लोगी सुनने की इच्छा रखा था अपन?
2: आज हमको देवी प्रसाद अग्रवाल के स्वर में कोई भी लोगी सुनवा देना। ये
1: जा इच्छा आपकी हम पूरी कर भी निश्चित है।
2: और आपके यहाँ के जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं काफी अच्छे आ रहे हैं सर। कार्यक्रम आपके यहाँ से बहुत मेहनत की जा रही है, हम लोगों की भी मेहनत, जो पत्र लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं या फेसबुक पेज पर भी लिखते हैं तो काफी अच्छा लगता है जब हम लोगों के नाम शामिल होते हैं सर। तो सभी श्रोताओं से हमारी ये गुजारिश है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो सभी लोग एक पेड़ अपने माँ के नाम हर वर्ष लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: देखो नामदेव जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने मन से गुनने पड़ती हैं, उनका कहवे की आवश्यकता नहीं पड़त। जो चीज आपने पंचन से कही है शुभ चीज कहवे की बजाय अगर पंच अपने मन से उखा अपने जीवन में अपनाए तो एक पौधा भी चाहे अपने पुत्र के नाम, अपने पिता के नाम, अपने पति के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी माता के नाम, को के नाम से भी जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे, पुण्यतिथि पे कहूँ भी रूप सकत है। वो पृथ्वी के लाने और अपने पर्यावरण के लाने बहुत अच्छो रहे
2: जी पंडित।
1: चलो बड़ी अच्छी बात भाई, आपकी इच्छा के अनुसार हम अपन का सुना रहे हैं देवी प्रसाद अग्रवाल को गाओ जो लोकगीत जो अपन ने सुनने के लाने।

0: हेलो
1: भैया, हेलो लोकंजन से। जय जय सियाराम।
0: गुरु जी बोल रहे हैं?
1: बिल्कुल गुरु जी बात कर रहे
0: हैं। हम बड़गाना जिला ललितपुर प्रदेश से सालग्राम पटेल बोल रहे हैं।
1: पटेल साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तार हो जाए आज के कार्यक्रम में। किको गाँव कौन से लोग की सुनने आपका?
0: हमको सुनना है आनंदी पटेल को।
1: आनंदी पटेल को
0: जी।
1: चलो ठीक है,
0: पर्यावरण भी बचाव जरूरी है आज के समय में, तो सभी बचाव जरूरी है हमारे समझ में तो।
1: बहुत अच्छी बात कही आप, में कोई शक नहीं है।
0: आकाशवाणी छतरपुर है जो हर विषय पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि कौन विषय छूटे ही, चाहे बिल्कुल डीजल बचाओ, पानी बचाओ, बिल्कुल पेड़ पौधे बचाओ।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो है कि नहीं?
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उस संदर्भ में हमने कही पानी बचाओ और संगे संगे पर्यावरण भी अपनो अपन बचाओ, को संरक्षण करें।
0: एक मास में एक फुट गहरे एक फुट सोहरे गड्ढा खोद के डाल दो।
1: बिल्कुल,
0: अपनी गोबर की पची गई खाद और अपनी मट्टी डालो उनमें लगाओ प्रति।
1: बिल्कुल,
0: तो इतना प्यारा पेड़ हो, इतने जल्दी बड़वार करता है, वो बहुत मीठे मीठे दुबा में फल हो। आकाशवाणी छतरपुर बताओ हम लोगों को।
1: और इसके अलावा क्या होता है आपको?
0: और खेती किसानी करते हैं सर,
1: तो गर्मी की जुताई वगैरह भोगी क्या होने हैं?
0: बिल्कुल, पानी गिरा बढ़ गया, फूल जाप से बढ़ गया, उसमें
1: एक काम और करवा लीजिए पटेल साहब संगे संगे
0: जी, मट्टी की जांच कर रहे।
1: हाँ,
0: गीत के बोल है। अरे दरे थाना पानी बहियो रे, हित में अपने नैया, ए भैया रे हित में अपने।

0: शालिग्राम पटेल जो अब अपन कार्यक्रम हलु लोकरंजन में अपनी पसंद पे आनंदी पटेल को गाओ जो जल संरक्षण पे आधारित बुंदेली लोकगीत सुन रहे थे। फोन लगाव के लाने अपन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने रेडियो सेट पे ट्यून करे हो मीडियम बीप 444.4 यानी 675 किलो हर्ट्ज पे आकाशवाणी को छतरपुर केंद्र। ई केंद्र से अब आप आनंद ले रहे हो कार्यक्रम हलु लोकरंजन को, जो कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र पे तैयार करके अपन की सेवा में प्रसारित करो जा रहा है। मीडियम वेव के अलावा जो कार्यक्रम अपन न्यूज ऑन AIR ऐप पे भी सुन सकत हो। ई कार्यक्रम को प्रसारण आज की भांति हर शनिवार की शाम 7:20 से रात्रि 8 के मध्य आकाशवाणी छतरपुर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत करो जात। अब सुने साथियों ई कार्यक्रम को अगलो फोन। हेलो लोकरंजन।
1: हेलो लोकरंजन से।
0: जी बिल्कुल।
1: भगवान जी नमस्कार।
0: जय जय सीताराम की मित्र।
1: पाठक मोहल्ला बहर गला से बोल रहे हैं पाठक।
0: हम मैथिली संत तिवारी बात कर रहे हैं पाठक जी आपसे, और सुनाओ का हाल चाल है?
1: और तिवारी बढ़िया है, वह सब गर्मी पड़ने लगी फिर से है। मुझे भी
0: आज 5 जून है और विश्व पर्यावरण दिवस है।
1: पर्यावरण दिवस है हाँ सर जी, आज
0: विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपका।
1: आपका भी तिवारी जी और आपकी आकाशवाणी परिवार का सभी लोगों का हमारी तरफ से सभी
0: शुभकामना के संगे संगे एक कामना और कि आप आपके परिवार के सभी सदस्य और आपके जितने भी परिचित हैं
1: जी
0: सब आपसे जुड़ के एक एक पौधा लें और अपने घर के आंगन में अपने दरवाजे पे जहाँ भी जगह मिले एक पौधा जरूर रोपे।
1: हाँ हाँ जी जी तिवारी जी, यही हम सब लोगों से बताएं कि
0: भाई जैसे ही फसलन में खाद की उपयोगिता है, जीवन में पानी की उपयोगिता है
1: जी तिवारी,
0: ऐसे ही शुद्ध वायु के लाने से पर्यावरण की भी उपयोगिता है
1: जी जी तिवारी।
0: ये चीज का अपन समझे और बता दो जाए आज के कार्यक्रम में कीको गाँव कौन से लोग भी सुनने।
1: पाठक जी की आवाज में सुनवा दो, चंद्रभूषण पाठक की आवाज में सुनवा दो आप।
0: चंद्रभूषण पाठक की आवाज में अपन ने लोग की सुनवो चाहो है अपन की पूरी कर भी। जय जय सीताराम की। फोन लगा लेने बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी।
2: ग्राम मुखिया क्षेत्र कवरई जिला में होबो उत्तर प्रदेश से प्रेम बाबू प्रजापति बोल रहे हैं।
0: हाँ प्रजापति जी, कार्यक्रम में स्वागत है। बताओ जाए कीको गाँव कौन से लोग ही सुनने।
2: चंद्रभूषण पाठक की आवाज
0: है। चलो चंद्रभूषण पाठक की आवाज अपन ने सुनने की बात कही है, जहाँ इच्छा हम पूरी कर भी। और क्या हो रहा हो आपको?
2: जी सर घर में बैठे थे, दुकान किए हैं तो दुकान ही में थे।
0: और मौसम कैसा है आपके? देखो
2: मौसम धूप निकली हुई है।
0: अच्छा
2: कूलर में बैठे थे।
0: चलो
2: आनंद ले रहे थे।
0: कूलर की जरूरत ना पड़े इके लाने अपन एक काम करो कि जैसे ही पानी बरसे वैसे ही एक एक पौधे अपने आसपास लगा लेगी जो फर्स्ट क्लास ठंडक बनी रहे चारों तरफ।
2: पौधे तो लगाते रहते हैं।
0: चलो तो जय अच्छी बात है, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी आपका ढेर सारी शुभकामना है
2: जी आपको भी।
0: और सुनो चंद्रभूषण पाठक की आवाज में लोकगीत जो अपन ने सुनवो चाहो है, जय जय सियाराम की।
3: हेलो लोकरंजन, जय सियाराम की। पहुंची आवे तिवारी जी
0: अपन का भी हमारी राम राम पहुंचे। और बोलो का हाल चाल?
3: बहुत मुश्किल में फंस पाए।
0: आई गजब, ऐसी चाह तो पहुंची कोनू के हृदय में के बिल्कुल फंसा ले अपनी बंसी में।
3: तो बहुत परेशान भाई जब मिले आप पकड़े।
0: चलो ठीक है, आज पकड़ में आ गए। और बताओ का हाल चाल है?
3: बहुत बढ़िया है तिवारी जी, मैं फूलचंद पाल मनकारी से बोल रहा हूँ।
0: जो बड़ो अच्छो करोगे अपने अपने मन से अपना नाम बता दो। कैसे अपने जो श्रोता भैया है उनका पतो भौची के किसे बात हो रही हमारी?
3: वैसे तो आप आपके पहचान जाए श्रोता सब एक दूसरे है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: लेकिन फिर भी नाम बताओ जरूरी
0: है, परंपरा है चुखापन का पालन करो।
3: बिल्कुल। और क्या हाल चाल है तिवारी जी? हाल चाल बताओ। बहुत
0: स्नेह फूलचंद भैया आपको, जो अपनोपन है जो इतनी हृदय से हृदय का जुड़े रखे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बता दो आज के कार्यक्रम में किको आप कौन से लोग सुन रहे
1: हैं? चंद्रभूषण पाठक जी की आवाज में सुनना।
0: चलो चंद्रभूषण पाठक की आवाज में अपन ने सुनने की इच्छा प्रकट करी है। फूलचंद भैया जाए इच्छा हम अपने सराखंड पे रख के अपन तक पहुँचावी ई कार्यक्रम हलुलुकनियों के माध्यम से। और का हो रो जो बता दो जाए हमें।
1: गर्मी बहुत ज्यादा है तो बस गर्मी को बचाव करत भाई।
0: हाँ,
1: पेड़ के नीचे बैठे, पेड़ खुली हवा में।
0: और ई पे मात तो खास सबका बताओ चलियो का ऐसे आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है।
1: हाँ बिल्कुल है, पर्यावरण दिवस भी कल था, मतलब
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनों आसपास को पर्यावरण अपन वातावरण साफ रखें।
1: बिल्कुल,
0: और जब जब अवसर मिले, जब जब कहूं के भी नाम से एक पौधा धरती में अवश्य रोपें, अनावश्यक पेड़ पौधे न काटें।
1: बिल्कुल न काटें, और काटे का लगाने की कोशिश करें कि हमारी जो वसुंधरा है, जो हमारी धरती माँ है, वो हरी हरी हो जाए।
0: बिल्कुल, कैसे कि आगे आवे वाली पीढ़ी जो अपनी है उनका अपन बतौर उपहार एक अच्छो पर्यावरण और एक सजी समृद्ध धरती अपन उपहार में दे सकते हैं। और जो सबसे बड़ा उपहार कहा है अपने, है कि नहीं?
1: सबसे बड़ा उपहार है हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो है, हम तो इससे बढ़कर जो है देशभक्ति से वक्त नहीं हो सकती।
0: तो ठीक है, अपन की इच्छा पे अपन का सुनवा रहे हैं हम चंद्रभूषण पाठक को गाओ जो दो और संगी साथियों के संगे लोकगीत। ई गीत का सुनो और गीत को आनंद लो और संगे पर्यावरण संरक्षण के लाने अपने संकल्प का दोहराव चलो और ऊपर अनुकरण भी करत चले। फोन लागे अपन का बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद भैया।
2: गुरु

0: हेलो लोकन्या
1: जी सर, जय श्री राम।
0: जय जय सियाराम की मित्र।
1: जगत सिंह बोल रहा है सर, पिपलिया तहसील बिगौन।
0: हाँ सुनाओ मित्र जगत सिंह।
1: बढ़िया है सर।
0: क्या हो रहा हो
1: सर? आपकी रिकॉर्डिंग का,
0: चलो आज की रिकॉर्डिंग की आप प्रतीक्षा कर रहे थे।
1: जी जी।
0: और आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम तैयार हैं।
1: जी
0: बता दो जाए किको आप कौन सो लोग सुनने आज के कार्यक्रम हेलो लोकरंजन में।
1: सर राजू पटेल की गाड़ी है वो सुनने हैं सर।
0: राजू पटेल की आवाज में गाड़ी सुनने अपन का है।
1: जी सर।
0: चलो ठीक है, राजू पटेल की आवाज में गाड़ी अपन का सुनवाइए है।
1: जी सर।
0: और कहा उतरा

0: जगत सिंह भैया
1: मनोरंजन में समय काटत रहे थे।
0: चलो तो ठीक है, मनोरंजन के माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से आप दुनिया जहान का देखत रहा था।
1: जी सर,
0: जहाँ बहुत बड़ी चीज है।
1: जी सर, आपके प्रोग्राम सुनते रहे थे आकाशवाणी से, सब जानकारी मिलती रहती। वो ये घूम बोर का है,
0: नहीं, बहुत है, बहुत अच्छी चीज है। इतनी बात तो बहुत पर्याप्त हो जाता है कि नहीं?
1: जी सर जी।
0: चलो ठीक है जगत सिंह भैया, आपकी पसंद पे सुनवा रहे हैं राजू पटेल की गाई गारी।
1: जी सर,
0: फोन लगा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे तुम्हें

0: हम श्री राम रेडियो श्रोता संघ बोगरी कलां जिला टीकमोर से बात कर रहे हैं।
1: हाँ पाठक जी, कार्यक्रम में स्वागत है।
0: धन्यवाद सर जी। भाई आप एक सबका लोकगीत असल में राजीव रावत की आवाज में सुनवा दो।
1: राजीव रावत की आवाज में है?
0: हाँ, कबला ध्यान से नहीं सुनो उनको।
1: राजीव रावत की आवाज में आपका हम
0: मैथिली तिवारी बोल रहे ना, आप हमने आवाज पहचान ली।
1: बिल्कुल मैथिली चंद तिवारी आपसे बात कर रही समय पे कार्यक्रम में।
0: वही तो कर।
1: तो और बताओ पाठक जी, क्या हो रहा हो?
0: बस जी अपनी पंडिताई वगैरह पुजारी है।
1: नहीं जो तो आप फरमा बताओ कि आप पंडिताई करत हो, पुजारी हो, कर्मकांड करवाओ रहा
0: और कार्यक्रम वगैरह हो जी, कार्यक्रम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। चलो तो ठीक है, आपके आसपास को परिवेश अच्छा बनो रहे, आपके गांव को पर्यावरण अच्छा बनो रहे।
0: सही कही आपने के वृक्ष वगैरह लगाए इसे का है।
1: नहीं अबे हम जो ना कभी वृक्ष लगाए, कहाँ से गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन वृक्ष लगावे की व्यवस्था में जरूर कर लें अपन, है कि नहीं? के जैसे ही पहले पानी बरसे मानसून अपने आ जाए वैसे ही अपन वृक्ष चीज के लाने अपन का सचेत बनो रहने हैं, जागृत अवस्था में अपन खराने हैं कि अपना पर्यावरण अच्छा बनो रहे। जयराम जी की फोन लगाने बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी।

0: लगे महिलो में।
1: राजीव रावत की गाय ई हरदोल चरित्र के संगे आज के कार्यक्रम हरिओ लोकरंजन को समय पूरा भाव। स्वीकार करो अपने सखा मैथिली शरण तिवारी की। राम राम। पंचो अवयापन रविंद्र कुमार प्रजापति की प्रस्तुति में श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतन के फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोकरंजन को आनंद ले रहे थे। पंचो कभी भी आपते बता के नहीं आते, हमेशा अपन खा आवे वाली आफत मुसीबत और परेशानियों के लाने कमर कस के तैयार रहने आउते है। अपन बुद्धिजीवी है, आगे आवे वाली स्थिति का आगे से अपन भाप लेते हैं, ऐसे अपन मनुष्य भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। वो केवल ई बात के लाने लिखो है कि मनुष्य जीवन के हर एक अच्छे बुरे अनुभव खां पहला से जान लेते हैं और भाप लेते हैं, और अगर कोई ऐसो न कर पाए तो उके लाने जा स्थिति बहुत खतरनाक भी पूजात है। जैसे ही जेठ मास बीतत वैसे ही अपन चौमासे की तैयारी पहला से करने लगत। इसे के अपन का पता है कि चौमासे में अपन का कौन कौन सी परेशानी होने हैं, और जैसे ही चौमासो बीतने लगत वैसे ही अपन ठंडी से बचवे के उपाय करने लगत। लेकिन ठंडी से बचवे को सबसे सही उपाय का है, अगर अपने पास गर्म उन्ना है उनका अपन अच्छे से सहेज लें। लेकिन गर्म कपड़ा भी बचत कबे करत है, जब अपन उन गर्म कपड़न के छेद मून लेते हैं, उन छेदन के ऊपर अपन कोनो दूसरो कपड़ा डाल दें, तब अपन खा ठंडी से पूरी तरह बचाव होते है। यही से कहूंगा वह परिस्थिति खा देख के भाप के अपन खा अनुमान लालो ची के अपन खा आगे क्या करने है। यही स्थिति का देखत भय जा कहावत कही गई है कि जो जाने जाड़े को भेद वो मुंदे कमरन को छेद। तो अपन खा हर स्थिति खा भाप के पहला से उनके छेद बंद करके अपने उपाय तैयार रखने हैं, यही समझदारी की बात है। और इस समझदारी में अपन सब माहिर हुगियो जो हमें विश्वास है, और अभी विश्वास अपनों ने ई बात को करो कि किशोरी भैया बातन खा और आगे ना खींचे, वे सीधे अपन खा बताएं कल के कार्यक्रम के कल के कार्यक्रम ग्राम सभा में अपन खा का सुनने हैं। कल की ग्राम सभा में बुंदेली धारावाहिक अटकन चटकन को 10वां भाग अपन का सुनवाओ जे है। इके अलावा बंधु सिंह लोधी से उनको काव्य पाठ अपन सुनो, और आज की सीख को विषय हुए जो सुख चाहो देह को चीजें तज दो चार, चोरी चुगली जमीन और पराई नार। जासी कपूर खा मेरे कल के कार्यक्रम ग्राम सभा में अभी दो अपने किशोरी भैया खां आज्ञा। पंचो राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: This is Akash Vani. In this special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yeldav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sunil. Ye Akash Vani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkhla. इसके अंतर्गत आज मैं मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक इसमें भाग ले रही है प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद
1: इन द 12 इयर्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंसिस्टेंटली सेड वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द की प्रायोरिटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट And the government's dream of upgrading women's development and women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government. Be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life, the targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us our two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए ये स्कीम्स तो अच्छी थी लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती है कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है जिस यात्रा के लिए उन्होंने और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है बौद्धिक तो होती है बट आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है लेकिन आर्थिक शक्ति तो फिक्स दिखाई देती है इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया और ये आश्चर्य की सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो है वो महिलाओं के खुले हैं

अब तो एग्जैक्ट परसेंट लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमन। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं, मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं। तो सालाना 1 लाख रुपया, देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, पर वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है। लेकिन

0: बैंक क्षेत्र में दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ पैर नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। वो महिला बन जाए तो लखपति गीता जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है, महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं एमएसएमईज को, जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत से श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, वो काम भी जी। और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। थ्री वार्ड्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाए, कुछ मार्क्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग आल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के मुद्दे हैं।
1: यस अजीत श्री, सुषमा जी ने सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब यू नो द वेरियस वे which financial empowerment has been made available for women. In fact, we were talking about the financial inclusion and the Pradhan Mantri Mudra Yojana, entrepreneurial inclusion, in which women have been major beneficiaries. And India's leading in increasing female labor participation among BRICS countries. 3 crore plus women-led MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the 4 pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education and housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense and sports. We just saw JEE advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in some disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore.

0: colleagues, understand what are the benefits available and avail them.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने नाइन सर्कल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना. अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में. ये फिगर मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अदिति जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे मैं महिलाओं का लिंगानुपात जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900 विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929 एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड विमेन आउट नंबरिंग मेन इन ऑलमोस्ट ऑल अचीवमेंट्स. दे गेट टू आउट नंबर देम इन टोटल एनरोलमेंट बट दे आर आउट नंबरिंग इन सक्सेस एंड स्टेम स्पेशल विच इज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट वी डोंट लिमिट देम टू आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैनेजमेंट एंड वुमेन इन बोर्ड्स दे हैव टू बी देयर. एंड फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच आई थिंक इज वी एम्पावर्ड मच मोर ड्यू द गिवन टाइम्स, वहां भी सरकार ने प्रयास किया है कि डिजिटल मार्केटिंग साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती है आने वाले समय के लिए. और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर विमेन विल गो टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़. फिर मातृ वंदना योजना जो पीएम मातृ वंदना योजना है मोर देन 20,000 करोड़ विमेन विल एक्सेस. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं बुड्ढी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026. More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है जी, सो मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स नीचे आए हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 98% बढ़कर 90% से
2: अलाइन 98%
1: तो ये आपको लगता है कि एक तरह से माइंड चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
1: जी,
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
1: जी, जी.
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, सुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है जस्ट गॉन फ्रॉम 39% to 100%. एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी सी. सो ODF फ्री इंडिया एंड जो मातृ मृत्यु दर मोर्टैलिटी एज यू सेड विच हैज मेनली रिड्यूस फ्रॉम 130 to 80, इट्स इज ह्यूज चेंज. नॉट मेयरली दिस, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, and I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality.

0: living slowly to healthier generations in coming times.
1: And also when they are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from mines, you know, into the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
0: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. You can see the women have dreams about their children now, especially the daughters. I have come across as a woman vice chancellor, literally. I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, swasth nari hi swasth rashtra ke janmdata hai. राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत एज वी सी. आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली. आदित्य, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मोदी सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिसकी महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है बॉक्स पोर्टल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हरासमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इश्यू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाए. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है. जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेकर वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस एलोकेशन बहुत बढ़ाई गई है ओवर द ईयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से यू नो व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवी लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सुनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिली का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ वुमेन हेल्प डेस्क जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 वुमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक

0: स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। तो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस में पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देशों में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहाँ बैठा हुआ पुलिस पर्सन सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से देगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पार्ट ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के यू नो कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी यू नो स्कोर मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज। वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
0: जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन के किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है विच इज इजीएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट। बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, छुट्टी भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एनवायरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कही है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। दे कैन बी बेटर रेसिपी, बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन रूट्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटर स्किल्स बिकॉज skills keep changing and the market needs different kinds of skills. At times they need digital skills in coming time, and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together, and then if you really train them into the right

0: needs also, I would say, or feels, then they are ready for the world. जो एक सरकार चाहती है women led development कब होगा वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो है ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति बंधन अब डीएम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%। और यही 33% जो पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र समाज दोनों इसके लिए तैयार है।
1: जो आप बोल रही हैं, अगर हम

0: कॉलेज फीचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र समाज दोनों इसके लिए तैयार है।
1: अच्छा जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, देखें जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई है एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है, तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस, आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज, आई कैन सी women administrators, women representatives. First-timer may be administration में तो first timer सभी होते हैं, so it really doesn't matter. They learn, and I've met administrators who say that we questioned our office when they say this can't be done. धोनी ने उसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, why are we here? तो लीजिए कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भाव, यानी पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई उधर पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेशली ऑफ यंग बर्न्स, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी केवल फर्स्ट इन एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है, और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए, वो अब आते आते तमाम प्रदेशों में 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: थैंक यू।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। पार्टिसिपेंट्स वर प्रोफेसर सुषमा यादव एंड अदिति टंडन, सीनियर जर्नलिस्ट। मॉडरेटर वाज सोनू सूद। दिस प्रोग्राम वाज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

करीब 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है बहारों के सपने। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत राहुल देव।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम में आगे सुनिए फिल्म कुदरत का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है एक बार फिर मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मेरा 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 8:45 हो रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक

0: बड़ी जिम्मेदारी है, ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी

0: तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मारतंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर

0: कि आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ। ये बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा

0: छोटा था, तो उसने बातचीत में सुनकर तुम क्या करते हो। मैंने कहा लिखने के, उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखू तुम्हारी कहानी। तो मैंने डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने उन्हें लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तो मैं ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे। तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आते हैं। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आप उस चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं अभाव की जो स्थिति है, आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान ली कोई खास स्थिति को देख रहे हो कोई अपंग है भांजी जो नहीं चल सकता है, उसको चलने में मदद नहीं।

0: मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान अधर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस

0: में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है, हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
1: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
0: जी,
1: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
0: जी।
1: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
0: जी,
1: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है
0: जी, जी।
1: तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
0: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
1: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
0: जी।
1: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
0: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
1: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों
0: जी,
1: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
0: जी,
1: और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जन सामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया
0: जी,
1: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
0: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
1: जी।
0: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
1: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक, से इतर भी अगर हम चलें तो जैसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख

0: भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का। और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सबकी सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा शिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। सभी के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गंगोड़े जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग टू यू वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गंगोड़े।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गंगोड़े से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर जयपुर आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य

0: योजना के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम रंगमोड़े। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ulas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangure Akashwani ke A shreni ke gayak kalakar hai. Unki gayaki mein sangeet ka saundarya, bhavyata aur madhurya jhalakta hai jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai aur yahi unke gayaki ki visheshta hai. गायन के साथ साथ वे कुशल तबला वादक भी हैं और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुले इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग द निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ulas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुले जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागरा से। विलंबित रचना तीनताल में निभ गए, बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीनताल में ही दो दूती बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख शब्द देखत और
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Ashay Kulkarni and on the harmonium by Shri Makarand Kharwandikar. Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश बांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेशी से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल के द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुल्डे विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द राग विथ द्रुत कंपोजिशन इन

0: सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
2: संगीत के आखिरी भाग के कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गंगोरे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशा कुंतली और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंदेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनिमुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसिटल बाय ऋषिकेश गंगोरे इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makarand Kharwandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया।